0: went down to the Hurricanes 47-24 at Eden Park. And Manchester City's Antoine Semenyo has produced a moment of brilliance. He scored the winning goal as City beat Chelsea 1-0 at Wembley Stadium.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
1: Playing Bollywood's biggest hits. Just chill.
3: I'll go.
2: You're listening to Avineet.
4: Kia ora, bula, salam, namaste, satsrikaal. Main hu abhi aapke saath mein, jabki aaj hai Sunday, 17th of May. Aise mein aapka saath dene ke liye abhi se lekar 6 tak yun hi saath milkar is safar ko tay karenge. Aur it is a beautiful day out there. Bilkul धूप खिली हुई है, ऐसे में काफ़ी लोग आउट एंड अबाउट है. आप सभी को शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में और ऐसे खूबसूरत मौसम में, खूबसूरत लम्हों के साथ में, खूबसूरत गाने के साथ में और खूबसूरत बातें करने के लिए मैं आ गया हूं आपके साथ में. शेयर करता रहूंगा, कुछ अपनी कहूंगा, कुछ आपकी भी सुनूंगा और इसी तरह से इस सफ़र को तय करते रहेंगे. याद रहे, ये है जस्ट चिल ऑन योर फेवरेट डायल. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और हमारी आवाज़ अब तक आ रही है रोवा पर और साथ में 104.2 FM पर. तो चले इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ऐसे मौसम में, खूबसूरत मौसम में, इस गाने के साथ में जो बिल्कुल औसम है. तो जी हाँ, याद रहे, मैं हूँ अभी आपके साथ में और इसी तरह से आपका साथ देता रहूँगा. लेट्स स्टार्ट द शो विच इज़ जस्ट चिल.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और आपको बता दूं कि जो मौसम है आज के लिए फोरकास्ट किया गया है, अभी तक तो धूप खिली हुई है और होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा ही मौसम रहे। लेकिन जो मेट सर्विस का फोरकास्ट है कि शायद शाम होते होते कुछ क्लाउडी पीरियड्स आपको नजर आ सकते हैं और विद आइसोलेटेड शावर्स नॉर्थ ऑफ फांगा परोवा। इसके साथ में जो सनसेट है ये फोरकास्ट किया गया है 5:22 PM दिस इवनिंग एंड ओवरनाइट इट्स गोइंग टू बी रियली चिली, जबकि 7 degrees तक टेम्परेचर्स एज लो एज 7 हो सकते हैं। इसके साथ में अगर जो मौसम की ओर देखें फो द कमिंग वीक यानी कि कल से ऐसा फोकस्ड किया गया है कि सुबह सुबह ठंडी रहेगी, लेकिन इसके साथ में आप काफ़ी हद तक सनी डे का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा कुछ सिचुएशन है इस समय कि एक हाई प्रेशर का सिस्टम है ओवर आओतेरोवा और इसके चलते जो मेट सर्विस के एक्सपर्ट्स हैं इनका कहना है आपको कोल्ड मॉर्निंग विद सनी स्काइज मिल सकती हैं।

आज है 17th of May, ऐसे में आज अपना जन्मदिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस समय हमें आप सुन रहे हैं तो आपको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। साथ में अगर जो आपके फैमिली में किसी का जन्मदिन है जिसकी खुशियां आप हमारे साथ में बांटना चाहते हैं तो 5599 पर ज़रूर हमारे पास में मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा अगर जो आपकी शादी की सालगिरह है हमारी ओर से बेस्ट विशेज़ आपको देते हैं। इसका भी जो जश्न है आप हमारे साथ में मना सकते हैं बाय ड्रॉपिंग अस अ टेक्स्ट ऑन 5599। या फिर आप हमें सुन रहे हैं और कुछ कोई आपका जो पर्सनल चॉइस है जिसे आप सुनना चाहते हैं, किसी एक नगमे को आप सुनना चाहते हैं, कोई एक गाना है जिसे आपने बहुत दिनों तक सुना नहीं, बहुत दिन हुए और इसको आप ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप हमारे पास में अपना जो प्यारा सा मैसेज है 5599 पर भेज सकते हैं। ये सभी कुछ हमारे साथ में कारवा चलता रहेगा 6 तक और आपके लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी लेकर आए हैं जो बारी बारी से आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। पूरा का पूरा गुलदस्ता है फूलों का, सजा कर लेकर आए हैं, आपके साथ में बांटते रहेंगे। Tagadum, tagadum.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर रोसम अभी के साथ है और आपको बता दें जबकि आज 17 तारीख मई है तो ऐसे में आप जा सकते हैं भोजन मेला फूड कार्निवल में जो कि आज जारी है दिन में 11 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है शाम 4 तक ये चलती रहेगी तो टिल 4 PM आपके पास में मौका है जहां आप जाकर 378 RRMU रोड रामारामा साउथ ओकलैंड में श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट में आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं जिनका लक्ष्य है कि लोट वेंकटेश्वरा टेम्पल प्रोजेक्ट के लिए धन इकट्ठा करें यहां पर फ्री एंट्री है फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स है साथ में फ्री फूड भी सेव किया जा रहा है शिवानी रेस्टोरेंट साथ में इडली सांभर के द्वारा और अगर जो आपको शॉपिंग करने का मन है आज तो यहाँ पर ढेर सारे ज्वेलरी स्टोर्स और क्लोथिंग स्टोर्स भी बिल्कुल अवेलेबल है इसके साथ में बच्चों के लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट ये सभी कुछ याद रहे 378 RRMU रोड रामारामा साउथ ओकलैंड में जारी है जहाँ पर आप जा सकते हैं इसके साथ में अगर जो टेक्स्ट प्लेटफॉर्म की ओर देखें एक बहुत ही प्यारा से मैसेज आया है 4132 थैंक यू सो मच आपने लिखा है गुड आफ्टरनून आपको गाने पसंद आ रहे हैं इसके साथ में कीप रॉकिंग आपको प्रोग्राम भी पसंद में आ रहा है थैंक यू सो मच फॉर दैट इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहिएगा हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और 6 तक हमारा और आपका ये प्यारा सा साथ बना रहेगा

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: Lace up and lock in. It's game time at Rebel with 30% off New Balance clothing and footwear and 30% off all Adidas adult clothing plus 30% off all Adidas kids shoes. Hurry, these deals and more end Sunday only at Rebel Sports. See online for T's and C's.
1: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleeping aid beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe. We are dreams big. Again.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best. Hamari good brands me.
2: Just chill.
4: जस्ट चिल में मैं हूं अभी आपके साथ में, और अक्सर मैं अगर जो मुझे कुछ क्लिपिंग्स मिलती है या फिर कोई इंस्पायरिंग कोट्स में देखता हूं तो आपके लिए इसे ढूंढ कर लेकर आने की कोशिश करता हूं। तो इस बार कुछ मुझे ऐसा नायाब मिला है जिसे मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। एक शब्द है जिसको कहते हैं फिया, एंड उसको अगर जो स्पेल करें तो FEAR, इसका मतलब इससे बनता है, इन अक्षरों से बनता है ये शब्द। और फिया का दो मतलब किसी ने बताया है, एक तो Forget everything and run, यानी कि F से forget, E से everything, A से end and R से run, forget everything and run, या फिर face everything and rise। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये शायद फिया का दूसरा अर्थ ज़्यादा पसंद में आएगा, यानी कि face everything and rise, so keep rising with him।

0: Just chill.
1: Yo, मैं हूँ छोटा सा छोरा.
2: You're listening to Avineet.
3: जी हाँ, घड़ी इशारा कर रही है हम स्टूडियोज में कि एक बज चुके हैं. ऐसे में आप भी शायद बाहर निकले होंगे घूमने फिरने के लिए, विच इज़ वेरी गुड. और इसके साथ में शायद आप अपने ग्रोसरीज के लिए निकल रहे होंगे, आपने लिस्ट तैयार भी कर लिया होगा. तो आपको भी शामिल करते हैं ऑन योर वे टू दी सुपर मार्केट्स. ऐसे में आपका साथ देते रहेंगे और आपको ये भी याद दिला दें कि अगले आवर पर आपके लिए लेकर आएंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जिसे लोग बेहद पसंद करते हैं. काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया है कि ये जो क्विज़ हम दो पर लेकर आते हैं इनको बिल्कुल पसंद है. बेसब्री से आप इसका इंतज़ार करते हैं. तो दो पर ये भी रहेगा आपके साथ में. लेकिन इन द मीन टाइम इस आवा पर जो गाना हमने चुना है आपके लिए बिल्कुल रोमांटिक अंदाज में, एक और एक प्यारा जो मैसेज है हमारे पास में आया है. क्वीन ने आपने अपना मैसेज भेजा है. गुड आफ्टरनून, आप प्रोग्राम इंजॉय कर रही है, सुन रही हैं, तो ये गाना आपके नाम करते हैं. और इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा विद हम. मैं हूँ अवि, ढेरों सारा प्यार.

हम के साथ में आप हमेशा विनर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम अमेजिंग अमेजिंग प्राइजेस आपको देते रहते हैं। पहले आपको बता दें कि हम फ्लाई अवे फ्रेंजी इसका जो अनाउंसमेंट है विनर का, ये अगले वीक किया जाएगा, जबकि 15 मई को इस कॉम्पिटिशन को राउंड अप कर दिया गया है। इसके साथ में एक और एक कॉम्पिटिशन है जो रोवा पर बिल्कुल जारी है, जिसका नाम है चेडल, जहाँ पर आपको कोई ना कोई कीवी वर्ड सेइंग फ्रेजेस के बारे में पूछा जाएगा और इसके बारे में आपको क्लूज दिए जाते हैं और डेली आप $100 का जो कैश इनाम है आप जीत सकते हैं। एक ग्रैंड पूल ऑफ प्राइज है $7,000, जिसमें से $100 डेली बेसिस पर दिए जाते हैं किसी एक लकी विनर को। अगर जो आप भी अपना लक आजमाना चाहते हैं, इस गेम को ज़रूर खेलें। जितना ज़्यादा आप खेलेंगे उतना ज़्यादा मौके हैं आपके जीतने के। तो ये सभी कुछ आपके साथ में हम बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप हमारे साथ में, हम के साथ में बने रहे और बिल्कुल एक विनर ही बने रहे।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Bunnings does have heaps of things you can do to keep your home winter ready. No one likes a draft. We've got door seals, window seals, moisture absorbers make sure nothing's getting too damp. Little things make a big difference.
2: Moriday MDS5 screw-on silver door seal, only $27.51. HPM 3-in-1 bathroom 2 heat fan and light, $141.80. Click 2000 watt upright desktop fan heater, just $15.
1: We can help you get winter ready for less. Lowest prices are just the beginning.
3: Save's massive whiteware washout ends tomorrow. Do you need a new washing machine, dryer, fridge or dishwasher? Then come and see us today. We've got New Zealand's best value whiteware deals, like get a Panasonic 6kg washing machine, only $5.49. Or a Samsung 236-litre fridge, now only $7.99. Plus, we have stock. Take them home today. Must end tomorrow, only at Big Save.
4: There are days when you nail parenting, but with no food in the fridge, this isn't one of them.
5: Dash! Ah! Savior of the lunchbox!
4: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
5: Dash!
6: Farmers Mega Home Sale is on now with all Sleepyhead beds half price. Super deals on chiropractic bed sets and mattresses from $9.99. And super deals on all Balance Plus Queen bed sets and mattresses. Shop Sleepyhead beds at Farmers. Conditions and exclusions apply.
7: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
10: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
11: Just chill.
12: That's right, just chill with Avi hai ye, aur jabki 126 ho chuke hain to do par aapke liye bilkul samachar rahega, lekin abhi ke liye aapke sath mein kuch interactive karte hain. Aap ye suniye aur ye sunne ke baad mein aap hame ye batayega text karke ki isme Raghu se chai ke liye kaun pooch raha hai aur Raghu kaun hai. Itna hi sawal hai. Is clip ko sunne ke baad mein 5599 par aap apne jo jawab hai bhej sakte hain apne naam ke sath mein. Clip hai bada chota lekin hai interesting, to ise suniyega.
13: रघु, कितनी चम्मच?
14: चम्मच एक ही, उससे चीनी दो बार.
12: तो ये था छोटा सा क्लिप. आपको ये बताना है कि इसमें रघु से चाय के लिए कौन पूछ रहा है और रघु को किसने प्ले किया है. एक बार चलो फिर से आपको सुनवाते हैं.
13: रघु, कितनी चम्मच?
14: चम्मच एक ही, उससे चीनी दो बार.
12: हाँ, तो चीनी दो बार रघु ने जवाब दिया है, चम्मच एक ही. तो ये आपको बताना है अंदाज़ा लगाकर कि इसमें रघु कौन है और रघु से चाय के लिए कौन पूछ रहा है. वैसे तो चाय के लिए 3 बजे का जो समय बिल्कुल औसम है, लेकिन अभी ही आपसे पूछ रहे हैं तो अपना जो जवाब है 5599 पर ज़रूर भेजिएगा. इस गाने के बाद में आपको भी अपनी तरफ से जवाब देंगे, लेकिन अभी के लिए शामिल करते हैं KK को.

0: कितनी चम्मच?
1: चम्मच एक ही, उससे चीनी दो बार।
2: तो चम्मच एक ही, उससे चीनी दो बार। और हमने आपसे पूछा था कि किसकी आवाज़ है या फिर कौन चाय के लिए पूछ रहा है और कौन बता रहा है इसमें रघु कौन है। तो काफ़ी लोगों का जवाब आया है और सुलभ आपने ट्राई किया है, थैंक्स फॉर ट्राइंग। आपने लिखा है सेफ इज़ आस्किंग और राजपाल यादव से पूछ रहे हैं, यानी कि राजपाल यादव रघु का रोल प्ले कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ट्राइंग। इसके साथ में एक और एक मैसेज आया है 11740, आपने लिखा है रघु इज़ प्लेड बाय संजय मिश्रा और पूछने वाले हैं संजय दत्त और फिल्म का नाम है ऑल द बेस्ट। इसके अलावा अमित आपने लिखा है कि रघु इज राजपाल यादव और पूछने वाले शाहरुख खान है, शायद आप फिसल गए। और अमिताभ इज आस्किंग, प्रशांत आपने लिखा है साथ में 7859, आपने लिखा है कि संजय मिश्रा पूछ रहे हैं। तो पूछने वाले संजय दत्त हैं और जवाब देने वाले हैं संजय मिश्रा। और इसमें जो सही जवाब जिन्होंने दिया है, क्रिश आपका जवाब सही है, लेकिन आप सभी को थैंक यू सो मच। इसमें पूछने वाले संजय दत्त थे और जवाब देने वाले संजय मिश्रा थे और ये फिल्म थी ऑल द बेस्ट। अगर जो आपने नहीं देखी है, इट्स अ वेरी गुड वॉच कॉमेडी के लिए और कॉमेडी टाइमिंग के लिए इसे आप देख सकते हैं। और बाकी लोगों से कहेंगे थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सुन रहे हैं, इतना ध्यान से सुनते हैं, जबकि 7 सेकेंड्स का ये क्लिप था, लेकिन इसमें फिर भी आपने सुनकर इसका जवाब दिया, थैंक यू सो मच। और दोपहर इसी तरह से आपके लिए लेकर आएंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहां पर एक और एक फैंटेस्टिक गाना का हमने आज चयन किया है, चूज़ किया है आपके लिए, और इसके बारे में आपसे पूछेंगे और इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा स्ट्रेट आफ्टर न्यूज़ एट 2। अभी के लिए मैं हूं अभी आपके साथ में, ये है जस्ट चिल का कारवा और ये कारवा आपके साथ में चलता रहेगा टिल 6। मजा लेते रहिए। जस्ट चिल।

हम रवि का साथ है और आपको अलग अलग तरीके के जो गाने हैं सुनाते रहेंगे और अलग अलग मूड के भी गाने आपके लिए बजाते रहेंगे। लेकिन कल ओकलैंड एफसी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जबकि ए लीग का जो ग्रैंड फाइनल है ये अब ओकलैंड एफसी अपने होम ग्राउंड यानी कि यहाँ ओकलैंड में गो मीडिया स्टेडियम पर होस्ट करेगी। ऐसा तब हुआ जबकि कल रात को जो एक और एक सेमीफाइनल में सिडनी एफसी ने न्यूकासल जेट्स को हरा दिया है सेकेंड लेग में, और ये जो गेम है सिडनी एफसी साथ में न्यूकासल जेट्स के बीच में पेनल्टीज पर डिसाइड हुआ। और इसके बाद में जबकि पूल स्टेबल पर ओकलैंड एफसी सिडनी एफसी से आगे थी, तो इसी कारण से जो फाइनल है अब ये गो मीडिया माउंट स्मार्ट स्टेडियम में रहेगी ऑन सैटरडे मई 23rd यानी कि अगले शनिवार को रात को 8:10 PM आप इस फाइनल को जाकर देख सकते हैं, ओकलैंड एफसी को सपोर्ट कर सकते हैं।

0: You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में। और समय की ओर देखते हैं तो 2:02 हो चुके हैं और अब इस मोड़ पर आए हैं जहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहाँ आज भी आपके लिए

ने बंटी और बबली से जो गाना था कजरारे उसको पहचाना था सबसे पहले हमारे पास में टेक्स्ट भेजा था। तो ऐसा करते हुए फॉर द फिफ्थ टाइम फाल्गुनी ने इस कंपटीशन को जीत लिया है। इस वीक देखते हैं कोई नया विनर है हु इज़ अप फॉर द चैलेंज। क्या आप तैयार है? तो हियर इट गोज। क्लूज आपके पास में भेज रहे हैं और इन्हीं क्लूज पर आपको बताने पर इसको सुनिएगा गौर से और इसी क्लूज के बिना आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा ये गाना है। हियर इट गोज। 15 नवंबर 1996 को रिलीज़ हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। धर्मेश दर्शन की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कुछ शशि कपूर की फिल्म जब जब फूल खिले से इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म के लीड पेज आमिर खान और करिश्मा कपूर की ये दूसरी और आखिरी फिल्म थी जहां दोनों ने साथ में काम किया। पहली फिल्म 1994 में रिलीज़ हुई अंदाज अपना अपना थी लेकिन दोनों एक साथ में पेयर नहीं हुए थे। वेरस इस फिल्म में जिसकी हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा से भरी फिल्म थी और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नज़र आए थे। इस फिल्म में जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं आमिर के साथ आपने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कुणाल खेमू को भी देखा और सारे बाकी कलाकारों में जोनी लिवा थे, नवनीत निशान थी, सुरेश ओबरे थे और एक वेम की रोल में अर्चना पूरन सिंह को भी आपने देखा। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है आरती के साथ जो पालन खेत जाती है छुट्टियों के लिए और टू रीचेरिश मेमोरीज ऑफ अ लेट मादा। वहाँ ये हाया करती है एक टैक्सी ड्राइवर को प्लेड बाय आमिर खान और उन दिनों में प्यार और फिर शादी भी हो जाती है उन दोनों में प्यार और शादी भी हो जाती है। फिर शादी के बाद जो इश्यूज क्रिएट होते हैं और कैसे वो बिछड़ कर फिर मिलते हैं इसी पर ये कहानी आधारित है। तो अगर जो आपको पता चलता है कि किस फिल्म के बारे में बात हो रही है इसी फिल्म का ये गाना है और उसी गाने को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये गाना बहुत ही आइकॉनिक और एक चार्ट बस्टर थी उन दिनों जब ये रिलीज़ हुई थी। इस गाने को फिल्म में आपने तीन बार देखा है। पहली बार उदित नारायण की आवाज़ में जबकि ये एक ऐसे मोड़ पर प्ले होती है जहाँ पर आरती को लेने उनके पापा पालन खेत आते हैं और प्यार राजा और आरती के बीच में बस शुरू ही होता है। राजा आरती को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, रास्ते में एक जगह रुकने पर ये गाना पहली बार फिल्म में लगता है। दूसरी बार कुमार शानू की आवाज़ में वर्जन 2 लगती है जब आरती और राजा के बीच में फैमिली मैनिपुलेशन के कारण कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है और तीसरी बार भी ये गाना लगती है क्लाइमेक्स पर। बस इसी गाने को आज आपको पहचानना है। इस फिल्म में म्यूज़िक नदीम श्रवण का है और लिरिक्स लिखे हैं समीर ने और समीर ने एक इंटरव्यू में इसी गाने को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग एनिकडोट शेयर किया। फिल्म के प्रोड्यूसर्स को इस गाने की ओपनिंग वर्ड्स जो कि परदेसी है से दिक्कत थी और उनका कहना था कि गाने की थ्रो या मीठा को ये वर्ड आउट कर रहा है। म्यूज़िक डायरेक्टर्स को यही परदेसी शब्द चाहिए था। फिर नदीम श्रवण ने प्रोड्यूसर्स को चैलेंज किया कि अगर ये गाना नहीं चला तो पूरा फीस लौटा देंगे और अगर चल गया प्रोड्यूसर्स को डबल फीस देनी पड़ेगी। तो रिलीज़ के बाद नदीम श्रवण ने डबल फीस ही ली क्योंकि द सॉन्ग वॉज अ रेज। इस फिल्म को बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और साथ में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर उदित नारायण जैसे अवार्ड्स दिए गए। जबकि उदित नारायण को ये गाना गाने के लिए अवार्ड मिला था तो कुमार शानू कुछ नाराज़ हो गए थे और उन्होंने यही कहा था कि एक ही गाना को दो प्लेबैक सिंगर्स ने गाया है, कैसे एक को मिल सकता है और दूसरे को नहीं। क्या आपको पता है, एक ट्रिविया की तौर में आपको बता दें कि इस फिल्म को पहले जूही चावला को ऑफर किया गया था लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो कर नहीं पाई। तो अगर जो आपको पता चलता है तो आपको 5599 पर हमारे पास में टेक्स्ट करना है कि किस गाने के बारे में हम बात कर रहे थे। 1996 की ये फिल्म राजा हिंदुस्तानी और उसी फिल्म से अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इस गाने को और अब आपको अब तक तो भेज देना चाहिए था अपना जो जवाब 5599 पर अपने नाम के साथ में एंड लेट्स लिसन टू द सॉन्ग।

जी हाँ, बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि 6 तक हमको आपके साथ में रहना है। और इट इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम अ ब्यूटीफुल मूवी। अगर जो आपने इसे काफ़ी दिन हो गए नहीं देखा या फिर कभी देखा ही नहीं, तो राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म का नाम है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पर बिल्कुल अवेलेबल है। और इस फिल्म के बारे में, इस गाने के बारे में नहीं, फिल्म के बारे में आपको एक और एक ट्रिविया दे दूँ। जब भी आप इस फिल्म को देखेंगे, जबकि ये फिल्म 96 में रिलीज़ हुई है, इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, अगर जो आप इसे अच्छी तरह से सुनेंगे, उस बैकग्राउंड म्यूज़िक को ईयर 2000 में नदीम श्रवण ने फिर से इस्तेमाल किया है। धड़कन में जो गाना है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, उसी ट्यून पर बैकग्राउंड म्यूज़िक है इस राजा हिंदुस्तानी का। तो इट्स अ क्रिएटिव रिसाइकल, जहाँ पर राजा हिंदुस्तानी का बैकग्राउंड म्यूज़िक्स को उन्होंने रिसाइकल करके धड़कन में एक गीत की तरह प्रेजेंट किया। और इधर जवाब की ओर देखते हैं तो हमारे पास में सबसे पहला पहल जो जवाब आया था, प्रियंका आपका, साथ में सिड आपका। लेकिन मुश्किल क्या हो गई कि आपने सिर्फ फिल्म का टाइटल भेजा है। और उसके बाद में हमारे पास में फाल्गुनी आपका मैसेज आया है सब, और उससे पहले 8196 आपने सही पहचाना। उसके साथ में लक्ष्मी जी आपका भी सही जवाब आया है। और उससे पहले आशीष वेलिंगटन से हमेशा हमारे साथ में हो जाते हैं, थैंक यू सो मच दोस्त, और आपने भी अटेम्प्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद या उससे पहले एक और एक मैसेज आया था 5817 आपका। लेकिन जो आज का सबसे पहला मैसेज, जिन्होंने गाने को भी पहचाना है साथ में फिल्म को भी पहचाना है, ये कोई और नहीं, गौरव है। गौरव थैंक यू, शुक्रिया दोस्त साथ होने के लिए। सबसे पहला जवाब, सही जवाब आप ही का आया था। इसके अलावा रीमा सुमित आपका भी मैसेज आया था, और शक्ति आपने भी अपना जवाब भेजा, और साथ में ललिता आपका भी जवाब आया था। लेकिन आज के जो विनर सरताज ठहरे हैं ये हैं गौरव, इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करके अपना जो जवाब है हमारे पास में 5599 पर भेजा था। आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और अगले वीक एक और कोई एक गाना लेकर आएंगे, ढूंढ कर लेकर आएंगे आपके लिए एपिक बॉलीवुड चैलेंज के लिए। लेकिन अभी के लिए आप सभी को इस गाने में शामिल करते हैं। Playing Bollywood's biggest hits.

ऑन दी वेव्स ऑफ हम, मैं हूँ आपका साथी अभी। और कल हमने आपको बताया था कि कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ रक्त बदल चेंजेस आने वाले हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन द ईयर 2028। जी हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर एरिका स्टैनफोर्ड ने बताया था कि NCI को रिप्लेस करेगा न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन फॉर ईयर 12 स्टूडेंट्स और साथ में न्यूजीलैंड एडवांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन फॉर ईयर 13 स्टूडेंट्स। तो 2028 में सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आगे बताते हुए आज सुबह सुबह इन्होंने कहा है एक और एक इंटरव्यू में कि इनका ये कहना है, एरिका स्टैनफोर्ड का जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, कि स्टूडेंट्स इनको बताते थे कि NCI का जो सिस्टम है उनको ये पता लग गया था कि कैसे इसको, इस सिस्टम को बीट करना है और कैसे ईजली क्रेडिट्स पिकअप कर सकते हैं इधर उधर, जहां पर इन क्रेडिट्स का कुछ एक्चुअल मीनिंग नहीं रहता था, यानी कि ये खास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ में कनेक्टेड नहीं थी। तो ये एरिका स्टैनफोर्ड ने बताया है। और ये जो नया सिस्टम है, जो न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन फॉर ईयर 12 और साथ में न्यूजीलैंड एडवांस सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशन ईयर 13 के लिए, जबकि ये 2028 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ईयर 9 के जो स्टूडेंट्स होंगे ये सबसे पहले पहल 2028 में इस एग्जाम्स को इस नए करिकुलम में, इस नए सिस्टम में इसका जो अंडरगो करेंगे इस NZCE साथ में NZACE को। तो ये सभी कुछ जो चेंजेस हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर किए गए हैं और ये आपको हम बता रहे थे।

हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि 20 मिनट बाकी है 3 बजने में। ऐसे में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन वाइन इंडस्ट्री इज़ टोइंग विद आइडिया, क्या वो रेड वाइन को एक बायोफ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि द नेक्स्ट सोर्स ऑफ बायोफ्यूल, क्या रेड वाइन इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। RNZ की एक रिपोर्ट में यह आया है कि ऑस्ट्रेलियन की वाइन इंडस्ट्री के पास में एक अबंडेंट सप्लाई ऑफ रेड वाइन है, जहां पर कुछ 263 मिलियन लीटर्स ऑफ एक्सेसिव यानी कि एक्सेस वाइन उनके पास में स्टॉक में है। और जबकि फ्यूल सप्लाई का शॉर्टेज है और फ्यूल का काफ़ी प्रॉब्लम ग्लोबली है, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियन वाइन सोसाइटी ये सोच रही है क्या इस पर कुछ काम किया जा सकता है, जबकि एक्सेस वाइन इनके पास में स्टॉक में है, इनको क्या किसी तरह से बायोफ्यूल में बदला जा सकता है या नहीं। तो इस पर बोलते हुए जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड के प्रोफेसर है रेचल ब्यूटन ने कहा है कि एथनॉल जो वाइन में प्रेजेंट है ये शायद E10 पेट्रोल से कुछ खास डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसको इस पर काम करना पड़ेगा और इसकी प्योरीफिकेशन में जो केमिकल सब्सटेंस एथनॉल है इस पर अलग तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा, ताकि ये सूटेबल आगे चलकर हो सके, ताकि इसे बायोफ्यूल की तरह यूज़ किया जा सके। तो देखिए, रेड वाइन के काफ़ी ढेर अन्य फ़ायदे भी हैं, और एक जो प्रोसेस में है जहां पर इस पर काम किया जाएगा कि किसी तरह से फ्यूल की जगह पर रेड वाइन को इस्तेमाल किया जाए, जबकि केमिकली इसको डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करके एक फ्यूल की तरह आगे चलकर शायद इसको इस्तेमाल किया जा सके।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: Get more bang for your buck this weekend at Mitre 10. Score yourself a $20 gift card for every $100 you spend in-store or online. Auckland stores only. Conditions and exclusions apply. Offer ends Sunday 17th of May. Don't miss out. On now at Mitre 10.
8: Auckland. This weekend, $100 spend karo in-store at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson. Or power $20 Mitre 10 gift card. Sirf Saturday and Sunday. T's and C's apply. More value, more projects, more savings. Jaldi kijiye. Mitre 10 Mega Westgate and Henderson.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari koi branch nahi hai.
11: हम पर अभी का साथ है और तीन बजने ही वाले हैं, जबकि कुछ 13 मिनट बाकी है 3 बजने में। जी हाँ, और ऐसे में आपको बता दें कि स्ट्रेट आफ्टर 3 आपके लिए लेकर आएंगे एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पर इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी उसके बारे में बात करेंगे और किसी की सक्सेस और साथ में अचीवमेंट को एक्नॉलेज करेंगे। कौन है ये, इसके बारे में ज़रूर बताएंगे आपको जस्ट आफ्टर 3। कीप हमिंग और भी इन्फॉर्मेशन आपको 3 बजे के बाद में दिए गए।

ये है हम। और आपको बता दें कि मई का महीना NZ म्यूजिक मंथ है, जहां पर लोकल आर्टिस्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं विद बेक योर बैकयार्ड बीट्स। आपके पास में मौका रहेगा वीकडेज सुबह 8, साथ में दिन में 11 बजे और 2 बजे दोपहर, साथ में शाम 5 बजे और रात को 10 बजे अपने फेवरेट आर्टिस्ट को वोट करने के लिए, जहां पर आर्टिस्ट में शामिल है जसराज बसरा, साथ में सेंसी प्रभाकर और रांझा राजन, साथ में सहोता विजन के क्रिस्टी और जेकब सहोता और संदीप लुबाना। तो इनको आप वोट कर सकते हैं और आपके वोटिंग पर आधारित ही ये जो आर्टिस्ट हैं इनमें से कोई 3 टॉप 3 में पहुंच जाएंगे। वोट करने के लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट करना होगा 5599 पर विद अ कीवर्ड MM, और ऐसा करके आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट को टॉप 3 में पहुंचा सकते हैं।

0: month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
1: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at IKEA.co.nz.
2: IKEA.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in
0: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड बिना एडेड केमिकल्स बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट बिल्कुल घर जैसा जिंजर हो गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर और हाँ बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक कशिश फूड्स ईट बेटर लिव बेटर
7: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
8: Flooring Extra. Adore your floor.
9: The Vibe Mix Events presents
10: The Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers Low Finity in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netboard from 6 p.m. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhiyaji, Rowdy Naman Chapar alongside Money, Monto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manurewa and Wicked Chicken Botany.
9: Don't miss out.

0: You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, समय की ओर ध्यान देते हैं तो 3 बज चुके हैं। ऐसे में वी आर हाफ वे थ्रू द शो। अभी का साथ है, 6 तक हम आपका साथ देते रहेंगे। और हमने आपसे कहा था कि कुछ बड़ी बात करेंगे 3 पर, तो ये बड़ी बात क्या थी इस वीक का? जो सबसे बड़ा इवेंट मेरे लिए था वो था 147th गिरमिट डे का जो सेलिब्रेशन, जिसे मार्क किया गया है फिजी में भी और ओकलैंड में भी। और इनफैक्ट कल काफ़ी धूमधाम से इस सेलिब्रेशन को मार्क किया गया, जहां पर 147 ईयर्स हो चुके हैं हमको फिजी में। और जबकि मई 14th को 147 ईयर्स बैक हमारी जो पीढ़ी थी ये भारत से होकर निकली थी और फिजी पहुँची थी। तो इसी तरह से हमारी जड़ें एक हैं, शाखाएं भले ही अलग हो गई हो, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो भारतीय डिसेंट के हैं और कई जगहों पर रहते हैं। और अगर जो आपको फिजी के बारे में बताए, फिजी के पॉपुलेशन के बारे में बताए, ये कुछ 940,000 लोगों की है, जो कि ओकलैंड से भी कम है। और आप जो फिजी से वाकिफ़ नहीं हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्यारा सा देश जो है, छोटा सा देश है, और यहाँ पर जो बहुत प्यारे प्यारे लोग रहते हैं, इनमें से एक शहर है समम्बुला, सुबह में ये सिचुएटेड है। और समम्बुला से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए और भी गर्व की बात है। जबकि समम्बुला से एक ऐसी महिला है स्मिता कुमार, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। स्मिता कुमार ने हिस्ट्री मेक कर दिया है, जबकि समम्बुला सुबह में ये पली बड़ी है। और साथ में समम्बुला में इन्होंने समम्बुला प्राइमरी स्कूल को अटेंड किया है, जिस स्कूल को मैंने भी अटेंड किया है, और वहाँ से डडली हाई स्कूल को अटेंड करते हुए ये पहुंची ग्लेसगो स्कॉटलैंड में इन द ईयर 2005। वहाँ पर जाने के बाद में पब्लिक सर्विस में काफ़ी काम किया, इन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया पब्लिक सर्विस और हेल्थ केयर के लिए। और साथ ही साथ में काफ़ी ऊंचाई तक ये पहुंच चुकी है, जबकि इनका पॉलिटिकल राइज है। ये लोकल कम्युनिटी में काम करते हुए इनको इलेक्ट किया गया है सिटी ऑफ एडिनबरा काउंसलर, और फिर उसके बाद में हिस्ट्री क्रिएट किया इन्होंने एज फर्स्ट पर्सन टू लीड अ पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप इन एडिनबरा। जी हाँ, स्मिता कुमार ने हिस्ट्री क्रिएट किया एज मेंबर ऑफ द स्कॉटिश पार्लियामेंट फॉर एडिनबरा साउथ वेस्टर्न, और ये रिप्रेजेंट करती है स्कॉटिश नेशनल पार्टी को। और एक वाकई गर्व की बात है, जबकि एक फिजी बोर्न सिटीजन जो थी स्मिता, ये पढ़ लिख कर और आगे बढ़कर इतनी ऊंचाई को छू लिया है। तो हमने सोचा कि एक इनको एक्नॉलेज किया

में शेयर करें। तो ये जो गाना है आप सभी के लिए है, इसे सुनिए और कहीं ना कहीं सुमिता की जर्नी को भी आप सुनकर अपने बच्चों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड।

हम पर 3:15 हो चुके हैं और आपको बता दें, आज सुबह जो एफ ए कप का फाइनल हुआ है 2 पर, जहां पर चेल्सी और साथ में मैनचेस्टर सिटी के बीच में खेल हुआ, इसमें मैनचेस्टर सिटी की जीत हुई है 1-0 से, जबकि एंटोनियो सेमेनियो ने 75th में एक बहुत ही खूबसूरत गोल बनाया, जिसको ट्रिकरी कह सकते हैं और एक क्लासिक फुटवर्क दिखाते हुए उन्होंने एक गोल बनाकर मैनचेस्टर सिटी को ये जीत दिला दी है। और एफ ए कप का जो ट्रॉफी है, जो खिताब है, मैनचेस्टर सिटी ने अपने नाम कर लिया है। जबकि चेल्सी के लिए एक काफी डिसअपॉइंटिंग सीजन ये रहा है और एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आज सुबह भी रही है। लेकिन शायद अगर जो बात करें तो इनकी मैनेजर जो आगे चल के अपॉइंट होंगे, ज़ाबी अलोंसो, ये शायद चेल्सी के मैनेजर आगे चलकर रहेंगे, जो चेल्सी फुटबॉल क्लब को मैनेज करेगी। लेकिन अभी के लिए मैनचेस्टर सिटी हैव टर्न्ड आउट टू बी द विनर्स, द विक्टर्स ऑफ एफ ए कप फॉर दिस सीजन।

हाँ, आप सुन रहे थे हम पर शरारती अंदाज में ये गाना। और इस पर इसके आगे आपको बता दें, EPL फिक्स्चर्स जो हुए हैं, इसमें एस्टन विला और साथ में लिवरपूल के बीच में जो खेल हुई थी कल, यहाँ पर एस्टन विला की जीत 4-2 से हुई। आज रात को मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉटिंगहम फॉरेस्ट के बीच में 11:30 PM पर गेम होगा। उसके बाद में ब्रेंटफोर्ड और क्रिस्टल पैलेस के बीच में कल सुबह 2 पर खेल रहेगा। फिर लीड्स टेक्स ऑन ब्राइटन, और इसी तरह से वुल्व्स और फुलम के बीच में सुबह 2 पर खेल रहेगा। एवर्टन और संडरलैंड के बीच में भिड़ंत होगी। न्यूकासल और टीम सुबह 4:30 पर खेलेंगी, और आर्सेनल और बेनली के बीच में सुबह 7 पर ये जो मैच है ये रहेगा। इसके साथ में वेंसडे को बोर्नमाउथ और साथ में मैनचेस्टर सिटी के बीच में रहेगी एक और एक खेल, और चेल्सी और स्पर्स के बीच में वेंसडे को 7:15 पर एक और एक मैच रहेगा। तो ये सेकंड लास्ट राउंड ऑफ फिक्स्चर्स है, जबकि सीजन एक क्लोज पर आ रहा है, और इसी सीजन के क्लोज के बाद में फीफा वर्ल्ड कप सोका जो टूर्नामेंट है ये शुरू हो जाएगी जून से।

0: of Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो ना।
0: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह,
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: The bell has gone, but is the day really over? Between sports meetups, play dates, homework, and late shifts, you need to be putting in the right stuff. Packed with calcium, vitamins, and protein, grab some Anchor. Real milk, real good.
6: Autumn's arrived, but the house needs work. Heat pump to clean, gutters are full, that laundry tap still drips. Don't worry, AA Home can help with tasks at your place. Search AA Home to book a job today. Your trusted tradies on tap.

हम पर मैं हूँ आपके साथ में अभी, और जबकि 15 मिनट बाकी है 4 बजने में, आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रेन टीजर। इसे सुनिए और थोड़ा आपको अपना दिमाग चलाना होगा, इसको एक्सरसाइज कराना होगा क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है। और अगर जो आप इसका जवाब जानते हैं तो 5599 पर ज़रूर भेजिएगा। हियर इट गोज। ये एक नाउन है, जो शब्द है एक नाउन है, और जब इसको बोलते हैं इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ वन लेटर वर्ड। जब आप इसको बोलते हैं और जब आप इसको लिखते हैं तो इट्स अ 3-letter वर्ड, और इसके शुरू के और आखिरी के जो लेटर्स है ये सेम है। तो एक बार फिर से, जब आप इस नाउन वर्ड को बोलते हैं तो इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ 1-letter वर्ड, यानी कि एक ही लेटर की तरह साउंड करता है, जैसे कि आप एक ही लेटर को कह रहे हैं। और जब आप इसको लिखते हैं तो लिखने के समय आप जब इसको स्पेल करते हैं तो 3 letters लगते हैं, 3 letters, और इनके शुरू के और आखिरी के जो लेटर्स है आर द सेम। तो अगर जो आपको मालूम है ये जवाब इसका, तो 5599 पर अपने नाम के साथ में ज़रूर भेजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा।

बस हाँ, तो हमने आपसे सवाल किया है कि जी हाँ, जो सवाल हमने आपसे किया था कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जब आप बोलते हैं, ये शब्द को प्रोनाउंस करते हैं, तो इट साउंड्स लाइक जस्ट वन लेटर बोल रहे हैं आप। अब जब आप इसको लिखते हैं तो लिखने के समय आप जब इसको स्पेल करते हैं तो तीन लेटर्स लगते हैं, और जब आप इस शब्द को देखेंगे तो शुरू के और आखिरी के जो लेटर्स है आर द सेम। क्या आपको मालूम पड़ा है कौन सा शब्द है? अगर जो आपको मालूम है तो 5599 पर ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, लेकिन ब्रेन टीज़र है तो इसीलिए टेढ़ा भी है। और एक बार फिर से, जब आप इस शब्द को बोलते हैं तो इट साउंड्स लाइक वन लेटर, और जब आप लिखते हो तो तीन लेटर्स लगते हैं, और इनके शुरू के और आखिरी के लेटर्स आर द सेम। 5599 पर अपने जवाब ज़रूर भेजिएगा, जबकि अंकुर ने हमारे पास में अपना जो जवाब है सबसे पहला पहल भेज दिया है।

हाँ, हम पर हमने जो सवाल किया था आपसे उसका जवाब था आई। जी हाँ, जो प्रोनाउंस करने वक्त एक लेटर जैसा लगता है, लिखने में तीन लगते हैं लेटर्स, और साथ में इनका शुरू का और आखिरी का लेटर्स आर द सेम। सही पहचाना था अंकुर ने इसके साथ में। 32741 आपका भी सही जवाब आया। दीप, शुक्रिया, आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं और आपने भी अपना जवाब हमारे पास में भेजा, थैंक यू सो मच। इसके साथ में 54624 आपका भी सही जवाब हमारे पास में पहुँचा है। और चार पर आपके लिए समाचार रहेंगे और उसके बाद में दो घंटे तक और हमारा और आपका साथ रहेगा। कीप हमें

हम पर आप सुन रहे हैं जश्न लवि के साथ में, और अगर जो आपको एंटरटेनमेंट की तलाश है तो मार्क द डेट्स 23rd of May, जी हाँ, और वेन्यू है नेटबॉल कोर्ट मनीरेवा, जहां पर वाइब मिक्स इवेंट आपके लिए लेकर आ रही है द ग्रैंड मस्ती नाइट, जहां पर फिजी के रिनाउंड आरजेज एसएन जय और नमन परफॉर्म करने वाले हैं। इनके साथ में ढेर सारा और एंटरटेनमेंट रहेगा। टिकट्स के लिए आप जा सकते हैं हंटर्स फूड टाउन पपटोई, जयज फ्रेश मार्ट पपटोई, साथ में गेट फ्रेश सुपर मार्केट मेंगरी और केस हेयर एंड ब्यूटी सलून मनीरेवा, विकेट चिकन्स बोटनी डाउन्स और जेंडा हेयर एंड ब्यूटी सलून, जाकर आप अपने टिकट्स ले सकते हैं। तो 23rd of May को यह हंगामा होने वाला है द नेटबॉल कोर्ट इन मनीरेवा, जिसके लिए आप टिकट्स इन शाखाओं से ले सकते हैं।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
3: Denny didn't think he needed a DVS system.
4: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
3: But it didn't sort the whole house, did it, Denny?
4: Nah, only one room. It was just too noisy.
3: So Denny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
6: हम पर मैं अभी आपको वीकेंड में स्पोर्ट्स की दुनिया का भी शेयर कराता रहता हूं, जहां पर इस वीकेंड कुछ गेम्स हुए, खेल हुए सुपर रग्बी के अंतर्गत। और फ्राइडे को जो खेल हुआ इसमें चीफ्स की जीत हाइलैंडर्स से 42-12 से हुई। इसके साथ में जो कल मैचेस हुए, यहां पर हरिकन्स ने ब्लूज को बुरी तरह से 47-24 से हराया। इसके साथ में एक क्लोज मैच रहा फोर्स और रेड्स के बीच में, जहां पर फोर्स की जीत रेड्स के खिलाफ 19-14 से हुई। और एक और एक खेल में दिल्ली टूट गया, जबकि वराटाज ने फिजियन ड्रुआ को 50-35 से उनके होम ग्राउंड HFC स्टेडियम सुवा में हराया। इसके साथ में फिजियन ड्रुआ का जो प्लेऑफ्स तक जाने का जो मौका है, चांसेस है, काफी कम हो चुके हैं। अब तो मिरेकल ही रहेगा, कुछ रिजल्ट्स और टीमों पर भी डिपेंड करेंगे, और तब कहीं जाकर ये शायद कट मेक कर पाए। लेकिन जो भी हो, देखेंगे कि क्या कुछ होता है। और अगले वीक का जो मैचेस है, इसमें क्रुसेडर्स और चीफ्स के बीच में फ्राइडे को खेल रहेगा। वराटास टेक्स ऑन ब्रम्बीज फॉलोइंग फ्राइडे। इसके साथ में मोना पेसिफिका और रेड्स के बीच में खेल रहेगी। हरिकन्स और हाइलैंडर्स एक दूसरे का सामना करेगी। साथ में फोर्स प्लेज फ्रीजियन ड्रुआ ऑन सैटरडे 23rd of May। तो ये सभी कुछ खेल, इंटरेस्टिंग अपडेट्स और फिक्चर्स और साथ में रिजल्ट्स आप तक ला रहे थे।

हम पर ओसम अभी का साथ है और जबकि जस्ट चिल का ये प्रोग्राम है, आपको याद दिला दे कि मंथ ऑफ मई इज एनजेड म्यूजिक मंथ, जहां पर लोकल टैलेंट्स को हम बेक कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं विद बेक योर बैकयार्ड बीट्स। ऐसे में आपके लिए वीक डेज सुबह 8, दिन में 11, दोपहर 2, साथ में शाम 5 बजे और रात को 10 बजे लोकल आर्टिस्ट के जो चयन हुआ है, इनके आवाज में गीतों को सुनवाएंगे और साथ में जो लोकल टैलेंट है इनको सपोर्ट करेंगे और आपकी वोट डिसाइड करेगी कि टॉप 3 आर्टिस्ट इनमें से कौन है। तो आपको सिर्फ ये करना होगा कि हर बार जब इन्हें आप सुने तो 5599 पर आप कीवर्ड MM लिखकर उन आर्टिस्ट का नाम लिखें जिसे आपने बेहद पसंद किया है, और आपके वोट्स पर ही ये जो चयन है टॉप 3 का ये होगा और आपके वोट्स काउंट होंगे अक्रॉस रेडियो एंड सोशल मीडिया एज वेल। तो याद रहे जो आर्टिस्ट का जो चयन हुआ इसमें जसराज बसरा है और साथ में सेंसी प्रभाकर है जो कि साउथ ऑकलैंड से एक आर्टिस्ट है, और इसके साथ में इसके अलावा रांझा राजन भी है जो इंडिया में एक एज आरजे काम किया करते थे लेकिन इनकी सिंगिंग में काफ़ी रुचि रही है, ऑकलैंड बेस्ड है ये। इसके साथ में सहोता विजन से क्रिस्टी और जेकब ये इन लिस्ट को मेक करते हैं, एंड नॉट फॉरगेटिंग संदीप लुबाना, ये पंजाबी आर्टिस्ट है इंडिपेंडेंट जो ऑकलैंड में बेस्ड है। तो इन सभी आर्टिस्ट को आप अपना प्यार दे सकते हैं, अपने वोट्स दे सकते हैं।

0: dear.
1: Streaming on Rover.
2: Get more bang for your buck this weekend at Mitre 10. Score yourself a $20 gift card for every $100 you spend in-store or online. Auckland stores only. Conditions and exclusions apply. Offer ends Sunday 17th of May. Don't miss out. On now at Mitre 10.
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland.gov.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ओल टुगेदर ऑकलैंड।
4: Playing Bollywood's biggest hits. Budget Gandhi.
5: यह है जस्ट चिल विद अवि ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। जबकि आपका ये फेवरेट बॉलीवुड डायल है, तो ऐसे में आपको बता दूं कि कल मैंने कर्तव्य देखी नेटफ्लिक्स पर, जबकि ये रिलीज हो चुकी है और सैफ अली खान ने काफ़ी अच्छा काम किया है, साथ में संजय मिश्रा ने। जब भी ये आते हैं तो एक धूम ही अलग से मचाते हैं, तो इनका भी काम बहुत ही अच्छा था और इसके साथ में कहानी भी अलग और यूँ कहें स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है, प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल अलग, और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया है। मैं इस फिल्म की रिव्यूज़ रेटिंग देख रहा था तो काफ़ी क्रिटिक्स ने इस फिल्म को पसंद किया है, अभिनय भी काफ़ी पसंद किया है। तो अगर जो आपके पास में मौका है और आप सोच रहे हैं आज क्या देखें, क्या चेकआउट करें, तो कर्तव्य एक ऐसी मूवी है जिसमें आप सैफ अली खान को देख सकते हैं अभिनय करते हुए, एक्ट करते हुए, जी हाँ, ग्लैमरस रोल में नहीं बल्कि एक रियलिस्टिक हार्ड हिटिंग टॉपिक को लेकर आए हैं और इनकी जो अभिनय बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं नेटफ्लिक्स में आज शाम या इवनिंग, अगर जो आप चाहें तो।

हम पर रवि का साथ है और इसका भी ख्याल रखिएगा कि शब्दों को कागज पर उतारने से पहले ये जरूरी है कि उन्हीं शब्दों को एक बार अपने जहन में टटोल कर देख ले कि क्या ये किसी से कहने के लिए या फिर लिखने के लिए बिल्कुल सही है या नहीं।

0: भीड़भाड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drug-driving.
2: Introducing Pizza Hut's new tikka and paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर मैं हूं आपके साथ में अभी और स्टूडियोज में घड़ी की ओर देखते हैं तो घड़ी इशारा कर रही है कि इट इज जस्ट आफ्टर 5. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा और आपका साथ 6 तक रहेगा एंड दिस इज द फाइनल आवर ऑफ द शो. तो इस आवर पर भी आपके साथ में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो लाइफ से कहीं ना कहीं मिली जुड़ी हो. इसके साथ में आपको प्यारे प्यारे गाने सुनवाते रहेंगे. ये सभी कुछ हमारे साथ में रहेगा. कीप हमिंग विद अवी. ये है जस्ट चिल.
2: You know that thing must be 100 years old.

0: साजी लो थोड़ा थोड़ा मर लो
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो दुनिया में आए हो तो लव कर लो थोड़ा साजी लो थोड़ा

हम पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं अवि। ये जरूर याद रखिएगा कि वक्त के साथ में लोग भी बदल जाते हैं। बुरे वक्त में आप अकेले रह जाते हैं और अच्छे वक्त में आपके आसपास भीड़ लग जाती है।

0: with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
3: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
2: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
3: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी.
2: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
3: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
4: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
2: Kahani of Indelible Homes.
7: Beating pump prices is easy with Auckland Transport. Simply use your Hopcard, credit or debit card, smartphone or smartwatch to tag on and off buses, trains and most ferries. Search AT Journey Planner and save when you mix your go with AT.
8: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a shower dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every shower dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
9: From the age of 10, I knew you would come. I didn't know when, but you arrived. Almost identical twins. Not quite. One just slightly bigger than the other. But you are the bravest part of me. The older I get, you're not always first into the room, but sometimes, if I give you the support you need, you'll be first into the room. You're close to my heart, and I love you. My name is Ursula Carlson, and this is a love letter to my breast.
7: Get to know yours, visit breastcancerfoundation.org.nz.
10: Jen didn't think she needed a DVS system.
11: Oh, I've got insulation in that.
10: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
11: Ah, yeah.
10: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
12: The heart of a healthy home, DVS.
13: आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर मैं अभी चल रहा हूँ और आपको बता दूं कि काफी लोगों की आदत होती है कि ये संडे इवनिंग कुछ 80s या फिर 60s और 70s के गाने सुनना पसंद करते हैं और शाम को जब ये बिल्कुल वाइंड डाउन करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं इवनिंग में खास करके, तो आप ऐसे गीतों को सुनना पसंद करते हैं. तो इसका भी ख्याल रखा गया है आपके लिए बिल्कुल हम म्यूजिक स्टेशन पर, जहाँ पर हम रिवाइंड में आप 60s और 70s के गाने सुन सकते हैं, साथ में 80s जुकबॉक्स जहाँ पर 80s के हिट नगमे आपके लिए स्ट्रो किए गए हैं. इसके साथ में फीजी भजन्स का भी एक प्लेटफॉर्म है जहां आप ये सुन सकते हैं और जितने भी हमारे पंजाबी हिट्स के फैंस हैं आपके लिए भी चढ़दी कला बिल्कुल पंपिंग नंबर्स के साथ में बिल्कुल रेडी है. इसके साथ में फीजी कीर्तन संग्रह भी है जहां पर फीजी के उच्च कोटि जो कीर्तन आर्टिस्ट है इनके आवाज़ों में यहां पर फीजी कीर्तन संग्रह में आपके लिए कीर्तन भक्ति रस कीर्तन स्ट्रो किए गए हैं. इसके साथ में राहत फतेह अली खान के भी जितने फैंस हैं, आपको इनकी आवाज़ में सूफी और कवालियाँ सुनना पसंद है तो ये भी आप संडे इवनिंग को बिल्कुल सुन सकते हैं. और ये सभी कुछ आपके आपके चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए हम म्यूजिक स्टेशंस में बिल्कुल अवेलेबल है.

हम पर आपके साथ में मैं हूँ अवि, और आपको याद दिला दूं जो हम फ्लाई अवे फ्रेंजी प्रमोशन जारी था, जहां पर एक रिटर्न एयर टिकट आपको मिल सकता था फॉर फिजी। इसका जो ड्रॉ है ये कमिंग वीक अनाउंसमेंट इसका होगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन विजेता ठहरा है, जबकि ये कॉम्पिटिशन राउंड अप हुआ है 15th of May को। तो इसी कमिंग वीक आप तक ये बातें पहुँच जाएंगी, ये अनाउंसमेंट पहुँच जाएगी कि इस टिकट के हकदार इस विनर्स कौन हुए हैं। इसका आप बिल्कुल लुक फॉरवर्ड करते रहिएगा, विच शुड बी दिस कमिंग वीक।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Driving you home.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
6: वो भी आई लव यू वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ से किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार.
3: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Bedzaras Manuko and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
8: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
8: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
7: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
10: Sarah Street is safer thanks to a fibre-powered speed camera, which is managed by the police who use fibre to process DNA matches, which is a different match to the hunk Tracy found on a dating site that had an ad from Chorus saying New Zealand runs on fibre.
11: It's the end of the day after walking a track.

आप हमें 104.2 FM साथ में रोवा पर सुन रहे हैं बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा। जैसे 12 से आपने हमारा साथ दिया इसी तरह 6 तक भी देते रहिएगा। कीप हमिंग विद अवी।

आज के लिए हमारी और आपकी मुलाकात बस यहीं तक थी। आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही वादा किए जा रहे हैं एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात अगले वीकेंड पर होगी, और जबकि कल से नए सप्ते की शुरुआत हो रही है, इसके लिए आपको बेस्ट विशेस दिए जा रहे हैं। आज के लिए आप खुद खुश रहिए, औरों को भी खुशी दीजिएगा, और डू टेक केयर। फिर मिलेंगे, बाय।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत करते हैं. आपके लिए संडे नाइट मेलोडीज मैं लेकर आ गया हूं. मैं क्रिश, अभी से लेकर 12 तक मैं आपका साथ दूंगा. मिडनाइट तक हमारा साथ रहेगा और एक के बाद एक आपके लिए फेवरेट सॉन्ग्स मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स भी हम लेकर आते हैं और ऐसे गाने जो आपने कम सुना है वो भी आपको सुनाएंगे. तो म्यूज़िक जो होता है हमारा संडे नाइट मेलोडीज़ का, मेलोडी से भरा होता है. नए पुराने होते हैं, कुछ भड़कीले गाने भी होते हैं जो आपको पसंद आता है. हाई एनर्जी सॉन्ग्स भी हम लेकर आते हैं. तो आप सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपका साथ दूंगा रात 12 तक और आपका खास स्वागत करता हूँ.

To all my lovely listeners, thank you so much for listening. अगर आपने अभी रेडियो ट्यून इन किया है, स्वागत करता हूँ. संडे नाइट मेलोडीज आप सुन रहे हैं और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको सुनाऊंगा, एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स भी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा. क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है और कॉम्पिटिशन है और कैसे आप फेबुलस इनाम भी हमारे साथ होकर जीत सकते हैं, इस पर भी जानकारी मैं आपको दूंगा. तो आप बस हमारे साथ चिपके रहे, हमारा साथ देते रहे, क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए है विच इज़ कमिंग अप ऑन दिस आवर एंड द आवर्स टू कम. हमारे जितने भी प्यारे लिसनर्स है, वेलकम टू द शो. आप संडे नाइट मेलोडी सुन रहे हैं और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

वीकेंड के लिए अगर आप बाहर गए थे और अभी लौट रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए होंगे, आई एम श्योर कुछ कुछ जगहों पर ट्रैफिक हो सकती है, तो अगर आप ट्रैफिक में हैं और हौले हौले जा रहे हैं आगे आगे अपने घर की तरफ, मंजिल की तरफ, तो स्वागत करता हूं आपका। जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, आप भी बस अभी निकलने वाले हैं कोई लंबी सफ़र पर, तो आपको भी बेस्ट विशेज, और आपके लिए प्यारे गाने मैं यहाँ से पेश करता रहूँगा। क्रिश का साथ है ऑल द वे टिल मिडनाइट, और आपको हमारा साथ देना है। संडे नाइट मेलोडीज जा रही है जो 6 PM to midnight आपके लिए रहता है। हम पर सुनते रहो, हम

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: एक से बढ़कर एक कंपटीशन भी आपके लिए रहता है ओनली ऑन हम, जिसके तहत आप बहुत सारे शानदार इनाम जीत सकते हैं। क्या आपको $100 अ डे जीतना है, और अगर आप कीवी वर्ड विजिट है, बहुत सारे कीवी वर्ड सेइंग और फ्रेजेस को आप क्रैक कर पाएंगे या कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए जानकारी है जो आई एम श्योर आप सुनते आए हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही जल्दी इस पर जानकारी दूंगा। क्रिश के साथ ही सुनते रहो संडे नाइट मेलोडीज। 17th मई है आज, और इस इवनिंग शो में मैं क्रिश आ गया हूँ मिडनाइट तक आपका साथ देने के लिए।

0: month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. The beat of Bollywood.
1: World's best, hamari good brands bhi hai.
2: Dil se,
3: dil se, dil tak.
4: You're listening to Krish.
5: Let's go!
6: ऑलराइट चैटल कंपटीशन के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही वंडरफुल ये कंपटीशन है. $100 a day जीतने का मौका है. अगर आप एक कीवी वर्ड विजर्ड है तो आप अपने नॉलेज को टेस्ट कीजिए और कैश जीतिए चैटल के साथ होकर. ईच डे आपको एक कीवी वर्ड सेइंग या फ्रेज गेस करना होगा. एंट्री में आप जाएंगे, ड्रो में शामिल हो जाएंगे और क्विक और शार्प अगर आप होते हैं तो बेटा आपके चांसेस होते हैं टू स्कोर $100 a day जीतने का मौका है. हर दिन खेलते हैं तो आप ड्रो में हर दिन शामिल होते हैं टू विन $100. ईच गेम इक्वल्स वन एंट्री. अगर आप जल्दी आंसर्स देते हैं तो बोनस एंट्री भी आपको मिल सकता है. $7,000 टू बी वन, तो बहुत ही लाजवाब ये अमाउंट है जीतने के लिए. तो आज ही रोवर डाउनलोड कीजिए क्योंकि रोवर के जरिए आप ट्रेडल में भाग ले सकते हैं. क्रिश का साथ है, सुन रहे हैं संडे नाइट मेलोडीज़.

संडे नाइट मेलोडीज में हम बहुत कुछ और भी लेकर आते रहेंगे अगले घंटे पर, बस आपको हमारा साथ देना है। एक और गाना सुनाते हैं और फिर अगले घंटे की शुरुआत होगी और उस पर उसमें बहुत कुछ हम लेकर आए हैं, खासतौर पर बॉलीवुड न्यूज़ भी हमारे साथ होगा। संडे नाइट मेलोडीज में मेलोडियस गाने भी आपके लिए हम पेश करते रहेंगे।

0: का मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: वेलकम बैक एवरीवन, आपका स्वागत है. गुड इवनिंग टू ऑल माय लवली लिसनर्स. संडे नाइट मेलोडीज लेकर मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. फ्रॉम 6 PM और मिडनाइट तक मैं आपका साथ दूंगा. 6 आवर्स के लिए आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स मैं पेश करूंगा. काफ़ी मेलोडियस और सेंसुअस गाने भी लेकर आया हूँ. संडे नाइट मेलोडीज प्रोग्राम का नाम है, तो ऐसे ही गाने आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. प्यारे प्यारे सॉन्ग्स के साथ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. इस घंटे पर फ्लाई अवे फ्रेंजी पर बातें होगी. अगर आप जीतना चाहते हैं एक रिटर्न एयर टिकट टू फिजी, आप एस्केप करना चाहते हैं टू अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो इस पर जानकारी मैं आपको इसी घंटे पर दूंगा. बट फर्स्ट आप कुछ गाने आपको सुनाते हैं, प्यारे प्यारे बैक टू बैक सॉन्ग्स, और उसके बाद मुलाकात होती है. वेलकम बैक एवरीवन.

सुनते रहो आपका नंबर वन, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, क्रिश का साथ है और साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडनाइट। बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन भी लेकर आएंगे। पति पत्नी और वो दो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ओर देखें तो ये कहा गया है कि ये आयुष्मान खुराना की फिल्म है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। कहा गया है कि इस फिल्म का स्लो स्टार्ट रहा है अभी तक और कलेक्शन डे वन देखा जाए, ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान इसमें नज़र आएंगे। तो कहा गया है कि डे वन कलेक्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, लार्जली मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं फ्रॉम बोथ क्रिटिक्स एंड ऑडियंसेस। स्लो स्टार्ट रहा है लेकिन होपफुली आगे चलकर फिल्म आगे और पैसा कमाए। फिल्म कलेक्टेड 2.99 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस ऑन इट्स फर्स्ट डे अक्रॉस 6,554 शोज। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड खबरें आप तक लेकर आते रहेंगे।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल नहीं। ऑकलैंड का ट्रस्टेड नाम RPS टायर्स, कार, SUV, ट्रक या फोकलिफ्ट, हर व्हीकल के लिए टॉप क्वालिटी टायर्स, पार्ट्स एंड टूल्स, डायरेक्ट इंपोर्टर्स ऑफ रोड वन एंड अदर क्वालिटी टायर्स विद अ सॉलिड प्राइस बीट गारंटी। 4x26 ईस्ट तमाकी रोड, पापा टोटोए, प्लस 24 आवर मोबाइल सर्विस। फॉर बल्क ऑर्डर्स कॉल रॉन ऑन 02217539 41 और विजिट rpstires.co.nz और देयर फेसबुक पेज RPS टायर्स। ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मार्ट।
1: Lace up and lock in. It's game time at Rebel with 30% off New Balance clothing and footwear, and 30% off all Adidas adult clothing, plus 30% off all Adidas kid shoes. Hurry, these deals and more end Sunday only at Rebel Sports. See online for T's and C's.
2: Playing Bollywood's biggest hit.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट 17th मई आज है सनडे नाइट मेलोडीज लेकर मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ आपका जन्मदिन है अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करना चाहेंगे बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे टीम हम की ओर से और बहुत सारा प्यार आपको मिला आई एम श्योर वीकेंड है तो काफ़ी लोगों ने कुछ ना कुछ तैयारी किया होगा घर पर कुछ सेलिब्रेशन तो हुआ ही होगा आज घर पर आपके लिए होपफुली यू हैव बीन पैम्पर्ड मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ हमारे जितने भी प्यारे लिसनर्स अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं अगला गाना आपके लिए हमारी ओर से तोहफा

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapka saath de raha hoon aur midnight tak hamara saath rahega. Aapke liye jaari hai Sunday Night Melodies. Ozone recovery may be delayed. Massachusetts, USA ke is research ne is baat ko saamne laya hai ki ozone recovery may be delayed. Is par jankari main aapko bahut hi jaldi dunga. Sunte raho Hum, main Krish aapka saath de raha hoon. Jitne bhi log abhi traveling kar rahe hain, aap careful rahe raaston par, saavdhani barte aur safely drive kare. Yahi hum आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अटेंशन पूरी तरह से रास्ते पर होने चाहिए. गाने तो यहाँ से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, प्यारे प्यारे लवली सॉन्ग्स, नए पुराने और आपके फेवरेट दौर के गाने भी हम लेकर आए हैं. अगर आपके सिंगर्स उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू जैसे सिंगर्स रहे हैं तो ऐसे भी गाने आपके लिए हम शामिल करते रहेंगे. कृष्ण का साथ है.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. At Woolworths, whether it's casserole or stir fry, we've got chicken for every occasion. Grab our fresh chicken thigh fillets, boneless, skinless, on special for just $16.90 a kg, large tray only. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
2: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो तो याद रखिए प्लास्टिक बैग ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए रिसाइकल सही करें ये आपके हाथ में है सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ऑकलैंड
3: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
4: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
3: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
5: संडे नाइट मेलोडीज जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं मैसाचुसेट्स यूएसए की ये रिसर्च 16 अप्रैल को पब्लिश किया गया है विच इज़ फेयरली रीसेंट MIT साइंटिस्ट ने दे फाउंड अ लूपहोल स्लोविंग ओजोन लेयर रिकवरी और कहा गया है कि सर्टेन इंडस्ट्रियल केमिकल्स लीक हो रहे हैं एटमोसफियर में और रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर अब डिले हो सकते हैं बाय 7 years कहा गया है इंक्रीज यूवी एक्सपोजर से इस डिले और भी आगे बढ़ सकता है या इस डिले को कोस कर सकता है और एक्सपर्ट्स ने अर्ज किया है कि स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ हार्मफुल एमिशंस को ध्यान में रखा जाए स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाए इन पर ताकि ओजोन रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और भी ऐसे साइंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बॉलीवुड खबरें भी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits, one after another. Aapke sare favorite songs hum pesh karte rahenge. Aapko bas hamara saath dete rehna hai. Samay raha to floating time crystal created. Ye bhi ek New York, USA ki research jo publish kiya gaya hai. Interesting read. Main aapke saath ye bhi share karunga. Lekin agle ghante par bahut kuch hai. आप बस हमारा साथ देते रहे क्योंकि प्यारे सॉन्ग्स और बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कंपटीशन में प्राइजेस कैसे आप जीत पाएंगे इनफैक्ट फ्लाईओवर फ्रेंजी पर बातें अगले घंटे पर करेंगे इस घंटे पर समय नहीं मिला आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताने लगा लेकिन अगले घंटे पर आपके साथ हम शेयर करेंगे

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: दिल से दिल से दिल तक आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम।
3: वेलकम बैक एवरी वन, यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और संडे नाइट मेलोडीज जारी है। 17th मई है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। प्यारे सॉन्ग्स एक के बाद एक हम लेकर आएंगे। अभी इट्स पास्ट 8 और मिडनाइट तक आपको हमारा साथ देना है। और इस घंटे पर फ्लोटिंग टाइम क्रिस्टल को क्रिएट कर दिया गया है, न्यूयॉर्क की ये स्टडी सामने आई है। साथ में बॉलीवुड न्यूज़ भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपको बस हमारा साथ देते रहना है। द कॉमेडी ड्रामा जिसमें ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन और भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगता है ऑन बॉलीवुड ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुनते रहो हम क्रिश के साथ है और मिडनाइट तक हमारा साथ रहेगा संडे नाइट मेलोडीज में। वेलकम बैक एवरीवन।

You're listening to number one humbling Bollywood's biggest hit Sunday night melodies. जारी है 17th मई है. Fly Away Frenzy. Rova app इसके लिए बहुत जरूरी है. अगर आपके पास Rova app है तो आप नहीं है. In fact आपको download करना होगा. This is how आप इस competition में भाग ले सकते हैं. हम special code words दिए जाएंगे आपको चार time दिन में. 8 AM, 11 AM, 1 PM और 5 PM. जैसे आप ये code सुनते हैं, 60 minutes के अंदर ये code आपको Rova पर enter करना होगा to be in the draw. और आप एक return air ticket to Fiji जीत पाएंगे. Imagine कीजिए सन सोक्ड एस्केप इस विंटर के दौरान, इस ठंड को एस्केप करने के लिए बीचेस, वाटर्स एंड पीवा आइलैंड वाइब्स. ये आपको मिल सकता है. टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा. संडे नाइट मेलोडीज जारी है.

0: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडो जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.
1: Get more bang for your buck this weekend at Mitre 10. Score yourself a $20 gift card for every $100 you spend in-store or online. Auckland stores only. Conditions and exclusions apply. Offer ends Sunday 17th of May. Don't miss out. On now at Mitre 10.
2: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
3: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 grams जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
4: You're listening to number one humbling Bollywood's biggest hit. Sunday Night Melodies जा रही है क्रिश के साथ है। कुछ और back to back songs आपको सुनाते हैं। प्यारे गाने हम लेकर आए हैं one after another। आप ये सुनते रहे क्योंकि Bollywood's biggest hits हम play करते हैं आपके लिए। साथ ही में याद रहे कि जो back your backyard beats हमारा theme है for NZ Music Month। अगर आप एक local artist है अभी भी आपके पास समय इसमें भाग लेने के लिए, आपके गाने feature किए जाएंगे on air और हमारे socials पर, और आपको वोट भी किया जाएगा और आप रोवा ऐप पर भी फीचर हो सकते हैं। इस पर जानकारी कुछ ही देर में आपके लिए हम लेकर आएंगे। सुनते रहो हम।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
1: उम्मीद करता हूँ कि बैक टू बैक सॉन्ग्स आपने बहुत ही पसंद किया होगा। बेहद पसंदीदा गाने जो थे वो आपके लिए मैंने शामिल किया। ऐसे ही प्यारे गाने और भी है। अभी तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट शुरू ही हुई है, 12 तक आपको हमारा साथ देना है। अभी भी हमारा जो मंजिल बहुत दूर है, और इसमें इस सफ़र में हम सफ़र बनकर आपको हमारे साथ चलना है, बिकॉज तब जाकर इस होल जर्नी का जो मज़ा है बहुत बेहतर होता है जब आपका साथ हमें मिलता है। आप हमारा साथ देते रहे, कुछ और प्यारे गाने आपको सुनाते हैं। ऑनलाइन लिसनर्स आपको बहुत ही जल्दी याद कर रहे हैं विद अ स्पेशल सॉन्ग जो मैं आपके लिए पेश करूंगा।

ऑलराइट, हमारे जितने भी ऑनलाइन लिसनर्स हैं आपको शामिल कर रहते हैं, अगर कुछ स्पेशल ओकेजन है, आपका जन्मदिन है या कुछ हो रहा है घर पर, इवेंट है, तो हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बधाई हो, और कुछ गुड न्यूज़ मिला है तो आपको बधाई हो. देर इज़ ऑलवेज रीजन्स टू बी हैप्पी, और उन रीजन्स को आप ज़रूर ढूंढें और मुस्कुराते रहे, खुश रहे. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडनाइट. जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स हैं, अगला गाना मैं आपके लिए शामिल कर रहा हूँ. होपफुली आप ये गाना एंजॉय करें, चाहे वहाँ पर रात हो चाहे दिन हो, ये गाना जब भी सुनते हैं तो बहुत मज़ा आता है. एंजॉय एवरीवन.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: अगले घंटे पर मिलते हैं विद मोर इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग खबरें, बॉलीवुड न्यूज़ लेकर आएंगे और जो साइंस रिलेटेड रिसर्च है जो मैंने आपसे कहा था आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो भी मैं आपके साथ लेकर आऊंगा. स्पेशली जो मैंने आपसे कहा था कि लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट स्टोरी, फ्लोटिंग टाइम क्रिस्टल को क्रिएट कर दिया गया है. इस पर जैसे समय मिलता है अगले घंटे पर आपके साथ हम शेयर करेंगे. सुनते रहो हम.

Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: Welcome everyone. You're listening to your number one Humpling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. अभी आप सुन रहे हैं हमें Sunday Night Melodies प्रोग्राम में और जितने भी हमारे लवली लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं. Welcome back to the show. साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा लगता है आपका साथ हमें मिलता है. और इस घंटे पर कुछ बॉलीवुड न्यूज़ हो जाए. कॉकटेल 2 पर जानकारी देंगे. वेलकम टू द जंगल ये अक्षय कुमार की फिल्म है. धमाल 4 पर भी आपको हम कुछ जानकारी देंगे. लव एंड वो पर भी हमारे पास जानकारी है जो आपके साथ शेयर करेंगे. ये सारे फिल्म जो है अपकमिंग फिल्म है और इस फिल्मों में क्या प्लॉट है या क्या स्टोरी लाइन है इस पर भी जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. संडे नाइट मेलोडी सुनते रहो. 17th मई आज है और मैं आपका स्वागत करता हूँ.

0: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स वन सॉन्ग वन हिट आफ्टर अनदर, यही हम लेकर आते हैं आपके लिए बेस्ट बेजोड़ बेहतरीन गाने जो आज हमारे साथ होंगे ऑल द वे टिल मिडनाइट संडे नाइट मेलोडीज में. कॉकटेल 2 आने वाली फिल्म है, मई 19th को कहा गया इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, दो दिनों में इनफेक्ट कहा गया है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंडाना, ब्यूटीफुल स्टार कास्ट को रखा गया है. डायरेक्टेड बाय होमी अदजानिया और ये will be a continuation जो एक romance style comedy रहा है of the original cocktail movie. और fans are very excited about the fresh cast pairing और music जो इसका है और कहा गया है कि काफ़ी यंग ऑडियंस को ये अट्रैक्ट करेंगे थिएटर्स में. वेलकम टू जंगल एक और मूवी है, इस पर भी जानकारी मैं आपको दूंगा जैसे ही हमारे पास समय मिलता है. और एनजेड म्यूजिक मंथ पर भी बातें करेंगे बहुत ही जल्दी.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
3: Driving you home.
4: The Drive Show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
7: वो भी आई लव यू वाला.
6: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
7: अच्छा आप दिलजीत तो
6: आए आए बताओगे.
4: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Bedzaras Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
8: Woolworths has savings in every aisle. Get Alpine Colby or Edam 1kg cheese blocks for $12.90 each, and Makona coffee sachets 8 to 10 pack just $3.99 a pack. Woolworths weekly specials. Now that feels good. T's and C's apply.
9: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.

मो म्यूजिक लेस टॉक, ऐसा ही हमारा आज का थीम है और ऐसा ही हम के साथ होता है. वी प्ले बैक टू बैक सॉन्ग्स फॉर यू ताकि आप एंजॉय करें. आप कुछ अभी और गाने सुने, उसके बाद में हम बात करेंगे अबाउट मो अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म्स और एनजेड म्यूजिक मंथ, जहां जहां हमें मौका लगता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम पेश करते रहेंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ऑल द वे टिल मिडनाइट संडे नाइट.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Put your head to Gandhi.
2: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
3: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits, and you're humming along with Krish on Hum. Welcome to the jungle. Ye Akshay Kumar ki film hai. 26th. मुझे लगता इनफैक्ट इस मूवी का भी रिलीज डेट नहीं रखा गया है लेकिन मेरे ख्याल से इट इज़ गोइंग टू बी रिलीज ऑन 26th ऑफ जून यस जहाँ तक इस इंफॉर्मेशन की बात अगर करते हैं ये अक्षय कुमार की लीड फिल्म होगी लीड रोल होगी इसमें जिसमें एक लार्ज कॉमेडी एनसेम्बल कास्ट होंगे लेकिन लीड रोल में अक्षय कुमार नजर आएंगे इसमें संजय दत्त सुनील शेट्टी अरशद वारसी और भी अन्य एक्टर्स है और डायरेक्टेड बाय अहमद खान एज पार्ट ऑफ द वेलकम फ्रेंचाइज और काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग मूवी ये लगता है जिसमें एक्शन कॉमेडी और एडवेंचर सीक्वेंसेस है और ये काफ़ी मेजर फैमिली एंटरटेनर बन सकता है ऐसा प्रोड्यूसर्स का मानना है मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 a.m.
5: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
6: NZ Post is always nearby. With over 560 stores across the country, you can always count on us to keep bringing the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
7: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. Trade

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits, Krish ka saath hai, aur midnight tak hamara saath rahega, aur Sunday night melodies jari hai aapke liye. Back your backyard beats, NZ Music Month, abhi ye pura month chalega, pura month, May mahina, jisme aapka jo gana hai, pesh kiya ja sakta hai, radio par hum par, 8 AM, 11 AM, 2 PM, 5 PM, aur 10 PM, aur jaise hi hamare listeners, aap sunte hai, aap please in gaano ko vote zarur kijiyega, local artist ko celebrate karne ke liye, support karne ke liye, 5599 पर कीवर्ड MM के साथ अपना वोट्स आप भेजें और टॉप 3 आर्टिस्ट के गाने रोवा पर फीचर किए जाएंगे. जो हमारे विनर की घोषणा है वो विल बी डिसाइड, दे विल बी डिसाइडेड थ्रू टोटल एंगेजमेंट, हमारे रेडियो वोट्स और साथ में सोशल मीडिया लव जो आप देंगे उनको. हमारे सोशल पेज पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आर्टिस्ट के वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं टू शो योर सपोर्ट. और जितने भी लोग अभी भाग लेना चाहते हैं तो आप भी अपना बायो के साथ फेवरेट सॉन्ग हमारे पास buzz@humfm.com पर भेज सकते हैं. कौन कौन से आर्टिस्ट के गाने आप सुन पाएंगे इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आपको दूंगा. कृष का साथ है

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: You're listening to number one, Humpling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. संडे नाइट मेलोडीज को आगे बढ़ाते हुए एक और प्यारा गाना आपको सुनाते हैं और फिर अगले घंटे पर आपके लिए और भी प्यारे गाने होंगे. बैक टू बैक सॉन्ग्स भी हम लेकर आएंगे और लोकल आर्टिस्ट जो के गाने हैं वो कब कब आप सुन पाएंगे और कौन से आर्टिस्ट है इस पर भी जानकारी आपको हम देंगे. एनजेड म्यूजिक मंथ जारी है और हम अपने सारे लोकल आर्टिस्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम इस कार्य में बहुत आगे हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. संडे नाइट मेलोडीज जारी है, सुनते रहो.

हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: वेलकम बैक एवरी वन. इट्स पास 10 और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स है, इट्स अनदर 2 hours टू गो. आपको हमारा साथ देते रहना है. इनफैक्ट हमका साथ तो आपको 24/7 देना है और आप देते आए हैं. थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा लगता है. साथ ही बदलते रहते हैं लेकिन ये जो प्रोग्राम चलता रहता है और प्यारे प्यारे गाने आपके लिए पेश होता रहता है आपके लिए, तो 12 तक मैं आपका साथ दूंगा. वेलकम बैक टू द शो. संडे नाइट मेलोडीज जारी है और मिडनाइट तक ये चलता रहेगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. इस घंटे पर आपके लिए एनजेट म्यूजिक मंथ पर बातें करेंगे. लोकल आर्टिस्ट के गाने आप सुन पाएंगे. कौन कौन से वो लोकल आर्टिस्ट है उनके बारे में बातें करेंगे. साथ ही में कुछ कम्युनिटी न्यूज़ हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके लिए बस आपको हमारा साथ देना है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

You're listening to your number one, hum playing Bollywood's biggest hits, Krish ka saath hai aur saath rahega till midnight. Vibe Mix events ki prastuti hai Grand Masti Night. Ye 23rd May ko hone ja raha hai Netball Manurewa mein. Yahan par Fiji ke renowned RJs, Satyanand, Jay Bhaiya ji, Rowdy Naman aur saath mein the dancing legend Charfar yahan par perform karenge after 17 years. Saath hi mein 5 to 6 Masala Mix jo skit hai. Yahan par Fiji mein ye 5 to 6 Masala Mix bahut hi famous radio segment hai aur uska skit स्टेज पर पेश किया जाएगा. ड्यूअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा को आप सुन पाएंगे जो मेल और फीमेल वॉइस में गाना गाते हैं. अमेजिंग मोंटो मोनिका को भी आप देख पाएंगे लाजवाब परफॉर्मेंसेज के साथ. युवा डांस ग्रुप होंगे, टॉप डीजेस भी यहां पर होंगे, बहुत सारे गिव अवेज भी आपको दिया जाएगा. फ्री पार्किंग है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइडेड है. टिकट्स आप हंटर्स फूड टाउन पापाटोए, जयस फ्रेश मार्ट पापाटोए, गेट फ्रेश सुपर मार्केट मैंगरी, कैसे एंड ब्यूटी सलोन मनुरेवा, विकेट चिकन बॉटनी, जेंडा हेयर एंड ब्यूटी सलोन कैवेंडिश ड्राइव से आप ले सकते हैं. टिकट्स लिमिटेड है, लिमिटेड टिकट्स रह गए हैं तो आप जल्दी से जाकर टिकट्स ले सकते हैं. क्रिश का साथ है.

0: Hollywood's biggest hits.
1: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली, हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट, कल का ग्लोबल सेंसेशन. तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे? ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
1: लोकल आर्टिस्ट की बात किया जाए तो एनजेड म्यूजिक मंथ जारी है, जहां पर लोकल आर्टिस्ट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बैक योर बैकयार्ड बीट्स इज आवर थीम। और विजय वर्मा एक बहुत ही वंडरफुल आर्टिस्ट है, आप उनको ओबियसली रेडियो पर भी सुनते हैं ब्रेकफास्ट शो में, लेकिन प्यारे प्यारे गाने भी ये लेकर आते हैं, तो उनका गाना भी आप सुन पाएंगे। मंडेज़ को अप्लाई होता है, ट्यूजडेज़ को जसराज बसरा, ओकलैंड बेस्ड इमर्जिंग आर्टिस्ट है, स्टेपिंग इन टू द इंडस्ट्री विद हिज डेब्यू पंजाबी रिलीज, और फ्रेशर एनर्जेटिक साउंड ये लेकर आते हैं। वेंसडेज को आप सेंसी प्रभाकर को सुन पाएंगे, ये एक इंडियन आरएनबी आर्टिस्ट है फ्रॉम साउथ ओकलैंड, क्रिएटिंग म्यूजिक स्ट्रेट फ्रॉम द सोल, और 350 सॉन्ग्स को उन्होंने लिखा है, और स्मूथ साउंड और इमोशनली ऑनेस्ट लिरिसिज्म के लिए ये जानी जाती है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, और भी लोकल आर्टिस्ट पर बातें बहुत ही जल्दी आपके साथ हम शेयर करेंगे।

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. एक के बाद एक आपके सारे favorite songs तो हम लेकर आते हैं. लेकिन अभी फिलहाल time आ चुका है काफी time बाद जब जैसे हमें मौका मिला है आपके साथ ये information share करने के लिए. Floating time crystal को create किया गया है न्यूयॉर्क USA में मार्च 22nd ऑफ दिस ईयर. ये रिसर्च पब्लिश किया गया है. यहाँ के रिसर्चर्स ने एक न्यू टाइप ऑफ टाइम क्रिस्टल क्रिएट किया है यूजिंग साउंड वेव्स और टाइनी बीड्स को लेविटेटेड करके उनको मूव किया गया है इन रिपीटिंग रिदम्स. और ये सिस्टम अपीयर टू ब्रेक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और साइंटिस्ट ने कहा है कि ये रिवील करता है अनयूजुअल एंड कॉम्प्लेक्स फिजिक्स. और इस डिस्कवरी से क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च को फ़ायदा हो सकता है आगे चलकर. तो कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता है और अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे साइंटिस्ट काम में लगे रहते हैं कुछ ऐसे इनोवेशंस और डिस्कवरी के लिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स दिल से दिल तक आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम
3: Welcome back everyone, you're listening to Sunday Night Melodies, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ and this is our final hour, स्वागत करता हूँ आपका, जितने भी हमारे प्यारे listeners हमारा साथ दे रहे हैं, thank you so much, आपने हमारा साथ दिया, 6 PM to midnight ये show होता है आपके लिए on Sundays, Sunday Night Melodies, और अभी 6 PM to 11 PM आ चुके हैं और final hour अब चल रहा है आपके लिए, स्वागत है आपका, इस घंटे पर लव एंड वो इन्फॉर्मेशन पर मैं आप फिल्म पर इन्फॉर्मेशन में लेकर आया हूँ जिसके साथ में जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और भी अपकमिंग फिल्में हैं मिर्ज़ापुर द फिल्म और दृश्यम 3 अगर हमारे पास समय रहता है तो ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और साथ ही में कुछ और लोकल सिंगर्स के बारे में जानकारी देंगे जो NZ म्यूज़िक मंथ के दौरान हम पर आप इनके लिए वोटिंग कर सकते हैं इनका वीडियोज़ आप सुन जो वीडियो है आप जाकर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देख पाएंगे और इनके लिए वोटिंग भी आप कर पाएंगे मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ एंड वेलकम बैक टू द शो

एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स तो हम लेकर आएंगे, लेकिन बॉलीवुड खबरें भी आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। अपकमिंग बॉलीवुड फिल्मों में फिल्में जो आने वाली है, क्या कुछ आप देख पाएंगे, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर पाएंगे, आपके फेवरेट स्टार्स इनमें नज़र आएंगे, इस पर भी जानकारी। जुलाई 3 को एक फिल्म रिलीज़ होगी धमाल 4, जिसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख और अर्शद वारसी को आप देख पाएंगे। ये कॉमेडी फ्रेंचाइज है जो न्यू एडवेंचर्स और कन्फ्यूजन लेकर आता है। माधुरी दीक्षित भी नज़र आएंगे इसमें अनिल कपूर के साथ, इसमें की रोल्स में ये दोनों नज़र आने वाले हैं। इंदिरा कुमार इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पूरा ठाना हुआ है कि ऐसा ही कुछ कॉन्टेंट ये लेकर आएंगे आपके अक्रॉस। फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनदर फन फिल्ड कॉमेडी एंटरटेनर। लव एंड वो एक और आने वाली फिल्म है, इस पर जानकारी मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूंगा।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू. विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी. T's and C's apply.

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: ना भुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ आऊँ?

0: पढ़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरे इनकी इधर उधर सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: कुछ देर तक और मैं आपके साथ दूंगा. मिडनाइट की ओर हम बहुत जल्दी अप्रोच कर रहे हैं और 12 तक हमारा साथ रहेगा. थैंक यू सो मच एवरीवन जो हमारा साथ दे रहे हैं. कुछ प्यारे और गाने हैं जो हमारे पास है वो सुनाते हैं, लेकिन जल्दी से लव एंड वो 14 अगस्त को ही रिलीज होगी. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल नजर आएंगे एंड इट इज डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली. सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. रोमांस ड्रामा होगा, इंटेंस इमोशंस होंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है और म्यूजिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बज ऑनलाइन क्रिएट करना शुरू कर चुकी है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया है कि ये ह्यूज बॉक्स ऑफिस ओपनिंग हो सकता है. क्रिश का साथ है.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: Playing Bollywood's biggest hit.

अब तो हमारा भी जाने का समय हुआ दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। हमारी मुलाकात अब होती है मंडे को, आ जाएंगे आपके लिए नाइट कैफे लेकर और मंडे टू थर्सडे नाइट कैफे हमारे साथ होगा, एवरी नाइट हम आपका साथ देंगे। अपना बहुत ही ख्याल रखें, हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर वीक जो कल शुरू होगा मंडे से, मंडे आपका की अच्छी तरह बीते और रात को मुलाकात होती है। कृष का बहुत सारा प्यार।

दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। Night Flight.

0: போயிட்டு
1: இருப்பேன்.
2: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसी ने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप तो
4: बताओगे।
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manuko and Pokekoi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09 2799439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है। 6 to 10 AM.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
5: Budget hit the Gandhi.
4: Night Fly.

0: एट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.
2: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

was the message, eh?

I'm Mani Ben. Hi, I'm Mani Ben. शकुंतला कांता की बड़ी बहन। मेरे डैड बोले कर ले शादी वरना मर जाएगी बूढ़ी दादी।

0: Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
2: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleeping head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
3: Night Fly.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 09278860.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स। Playing Bollywood's biggest hit.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Tiger Bar and Restaurant in Soho Hotel Mount Roskill. Aaye aur enjoy kare inka sophisticated dining experience jahan par aapko tarah tarah ke flavors milenge. Creative Asian fusion dishes se lekar zesty seafood tak, saath mein refreshing cocktails, sab kuch ek bahut hi elegant aur stylish andaaz mein. Ye open hai for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.
3: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है वे सिटी GWM हैवल हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले लिमिटेड टाइम ऑफर टीज एंड सीज अप्लाई फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स
5: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good morning, I'm Gary Denver with the latest at 6. Police are urging owners to check their jet skis for issues after helping with a rescue in the Hauraki Gulf. Two people were pulled from the water in the Motuahe Channel near Emu Point just before 2 yesterday afternoon. Their vessel had exploded and burst into flames. Early indications are it was due to the 20-year-old machine's fuel vapour line catching fire. Water Safety New Zealand's echoing a coroner's call to take rock fishing seriously. A report on the death of two Northland friends has revealed neither was wearing a life jacket. Chief Executive Glenn Scanlon says it can be the difference between life and death.
7: Evidence and research tends to suggest that you're three times as likely to survive if you end up in the water with a life jacket on. It will keep you safe and give time to raise the alarm.
6: The chief victims' advisers backing Nationals' proposed crackdown on sentencing for sexual offending. The party wants to stop judges from reducing sentences based on good character and reputation. Ruth Money says it should have never been considered a mitigating factor in the first place.
8: You can't be of good character. It's just nonsensical. There is no way that someone of good character then goes ahead and sexually violates a child or an adult.
6: In sport, to rugby league with Machinery House, a big blow for the Warriors in their impressive 42-12 win over the Broncos at Suncorp Stadium. Coach Andrew Webster expects in-form halfback Tana Boyd to miss the rest of the NRL season with a serious knee injury.
9: Yeah, he's definitely going to go for scans, obviously, to potential ACL.
6: The Warriors are second on the ladder, 2 points behind the Panthers, who beat the winless Dragons 28-6.
5: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
10: Weather update.
11: 8.3 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain aaj ka high 18 overnight kam se kam 8 degrees rahega aaj ek bar phir generally bahut hi saaf aur suhana mausam rahega halanki Whangaparua ke north mein kuch halki barish ho sakti hai sunrise 7:13 AM par aur sunset aaj ka 5:21 PM par hone ko hai
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja
12: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins Fortune fuels every win big or small bring home the fortune
11: Breakfast Catch-Up ka wakt ab ho chuka hai. Swagat hai aapka. Hum playing Bollywood's biggest hits par. Aaj ek bar phir Monday hai 18th of May. Aaj ki ye subah aap sabhi ko bahut bahut bar shubh aur mubarak ho. Aur vaade ke mutabik aage hai. Aapka saath dene ke liye ek bar phir hum on the show. Aur abhi se lekar theek 10 baje tak hamara aur aapka saath is program mein hone wala hai. Sabse pehle aapko bhi a very good morning.
13: Good morning, aap sabhi ko bhi a very good morning, namaste, and hum par aap sabhi ka special welcome hai.
11: और होपफुली वीकेंड आपका अच्छा गया होगा और अब एक नए सिरे से एक नए वीक को एक नए दिन को शुरू करने के लिए आप तैयार होंगे. आपका वीकेंड कैसा रहा?
0: मेरा वीकेंड इट वाज गुड, नो कंप्लेंट्स. एज लॉन्ग एज यू गेट सम यू नो सम टाइम फॉर योरसेल्फ किसी भी दिन, आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड. बट ऑन द अदर हैंड थोड़ा बिजी भी था बिकॉज सैटरडे आई वेंट टू अटेंड दिस इवेंट विच वॉज द 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे. बहुत अच्छा था, वेल ऑर्गनाइज एंड देर वर सो मेनी थिंग्स देर वर हैपनिंग देयर. तो काफ़ी अच्छा इवेंट गया एंड दोज ऑफ यू हु अटेंडेड इट तो शायद आपको पता ही होगा व्हाट्स द सिचुएशन लाइक. बट ऑन द अदर हैंड या दैट्स व्हाट आई डिड ऑन सैटरडे एंड संडे वाज अ बिट क्वाइट डे, डिडन्ट डू मच. तो घर पर ही थी तो आई एंजॉयड माय टाइम.
11: और जो वीकेंड है इसके बाद होपफुली आप भी रिचार्ज्ड होंगे, रिजुविनेटेड होंगे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर वीक. बच्चों के लिए बैक टू स्कूल और साथ में बाकी के लिए ऑफिस. आप में से शायद कुछ ऐसे भी लोग हों जिन्होंने वीकेंड काम किया हो, आज थोड़ी छुट्टी होगी ना?
0: हाँ, कुछ लोगों का डे ऑफ होगा आज प्रोबेबली, या फिर यू नो यू डोंट हैव वर्क टुडे क्योंकि आपने एडवांस में फॉर सम इम्पोर्टेंट चीज़ें लीव अप्लाई की होंगी. बट व्हाटएवर द सिचुएशन इज, व्हाट वी ट्राइंग टू से हियर इज, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, जो हम ट्रूली अप्रिशिएट करते हैं. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके साथ के लिए, आपके समय के लिए और जहां कहीं भी है साथ आप हमारा दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच.
11: तो शुरू कर रहे हैं आज का ये सफ़र हम, और इस सफ़र में आज बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके बारे में बारी बारी से डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे.

0: Inside Up.
1: जय की कहानी जो है ये मेक्सिको की कहानी है और वहाँ पर लोगों के साथ जो हुआ है उसको लेकर ये कहानी, खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं। न्यू मैक्सिको ने अपना जो यूनिवर्सल चाइल्ड केयर प्रोग्राम है इसे और बढ़ाया, लेकिन यही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा किया जहां जो शायद किसी और स्टेट ने अभी तक नहीं किया है। ये जो स्टेट है हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स स्टेपिंग इन टू रेज देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने नाती पोतों को पालने का काम करते हैं। ऑफन बिकॉज पेरेंट्स या तो एडिक्शन से लड़ रहे होते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं, या दे आर कम्प्लीटली एबसेंट, अपने बच्चों की ज़िंदगी में होते ही नहीं हैं। तो ये एल्डरली सिटीजन्स जो हैं, दादा दादी, साथ में नाना नानी, ये अपना अपनी जो बची कुची पूंजी है ये अपने ग्रैंड किड्स को पालने में लगा रहे थे। और सरकार को जब ये बात पता चली तो उन्होंने एक नया कानून जो है ये इंट्रोड्यूस किया जहां पर इन ग्रैंड पेरेंट्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, और द गवर्नमेंट हैज द स्टेट हैज स्टार्टेड

0: इट्स अ वेरी जरूरी चीज है करनी कि ऐसा किया जाए एंड यू नो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके समय को उनके केयर को भी वैल्यू किया जाए।
1: तो ऐसी और भी कहानियां हर दिन आपके लिए हम लेकर आते हैं सनी साइड अप में। और हम

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
2: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
5: Bunnings does have heaps of things you can do to keep your home winter ready. No one likes a draft. We've got door seals, window seals, moisture absorbers make sure nothing's getting too damp. Little things make a big difference.
6: Moriday MDS5 screw-on silver door seal, only $27.51. HPM 3-in-1 bathroom 2 heat fan and light, $141.80. Click 2000 watt upright desktop fan heater, just $15.
5: We can help you get winter ready for less. Lowest prices are just the beginning.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global headlines.
10: आज सुबह के मुख्य समाचारों में, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने जल्द ही डील साइन नहीं की तो उसका वजूद ही मिट जाएगा। ट्रंप ने यह नया थ्रेट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू से बात करने के बाद ट्रुथ सोशल पर दिया, जहां दोनों ने ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू करने पर चर्चा की। इससे पहले यूएस ने यूरेनियम ट्रांसफर और न्यूक्लियर लिमिट्स की 5 शर्तें रखी थी, साथ ही ईरान के फ्रोजन असेट्स को रिलीज करने और वो डैमेज का हर्जाना देने से भी साफ मना कर दिया था। उधर गाजा में चल रहे कमजोर सीज फायर के बावजूद इजरायली हमलों में हमास के सबसे सीनियर मिलिट्री लीडर इज अल दीन अल हदाद की मौत हो गई है। IDF और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक ये एक प्रिसाइज स्ट्राइक थी, जिसमें अलहदाद के अलावा कम से कम 7 और लोग मारे गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से नवाजा गया है, जो उनका 31st इंटरनेशनल ऑनर है। 2 दिन के स्वीडन दौरे पर पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत गोथनबर्ग एयरपोर्ट पर वहां के प्राइम मिनिस्टर ने किया था। फिजी में सिंगटोका के मलंगलंगेरे के लोग पिछले 6 से 11 दिनों से पानी की किल्लत से परेशान हैं और वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी से इसका जवाब मांग रहे हैं। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार रेसिडेंट्स का कहना है कि अगर पानी आता है तो सिर्फ 3 दिन रहता है और प्रेशर इतना कम होता है कि घर के रोजमर्रा के कामों के लिए ये पूरा नहीं पड़ता है। IPL के एक मैच में आज सुबह दिल्ली कैपिटल्स

0: की जीत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुई। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी बारी में 8 खिलाड़ी खोकर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 5 खिलाड़ी खोकर 19.2 ओवर्स में 197 रन बना लिया। पॉइंट्स टेबल पर अभी डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर प्रथम स्थान पर है, गुजरात टाइटंस दूसरे, सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे, पंजाब किंग्स चौथे, राजस्थान रॉयल्स फिफ्थ, चेन्नई सुपर किंग्स सिक्स, दिल्ली कैपिटल्स सेवन, कोलकाता नाइट राइडर्स एट, मुंबई इंडियंस नाइन्थ और लखनऊ सुपर जायंट्स टेंथ पोजिशन पर है। उसके अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस जो हैं ये भी सप्ताह अंत खेले गए और आज सुबह जो मैचेस हुए हैं ब्रेंटफोर्ड और क्रिस्टल पैलेस दो दो गोल से बराबर ठहरे। संडरलैंड की जीत एवर्टन के खिलाफ 1-3 से हुई। लीड्स ने ब्राइटन को 1-0 से हराया। वुल्वरहैम्पटन और फुलहम एक एक गोल से बराबर ठहरे जबकि न्यूकासल यूनाइटेड की जीत वेस्टहैम के खिलाफ 3-1 से हुई। उधर फिजी में एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग के मैचेस सप्ताह अंत खेले गए जिनके परिणाम इस तरह से रहे। लोटोका की जीत नांदी के खिलाफ 2-1 से हुई। ननरुंगा ने सुबह को 4-1 से हराया। नावुआ और नसीनू एक एक गोल से बराबर ठहरे। रेवा की जीत मबा के खिलाफ 3-2 से हुई जबकि लंबासा और तालेवुनी तसीरी नील ओल से बराबर थे। इसके बाद अब पता चल चुका है कि कौन कौन सी टीमें इस साल फिजी फैक्ट में नजर आएंगी। जो टीमें फिजी फैक्ट में खेलने वाली हैं वो है लोटोका, ननरुंगा, सुबा, नावुआ, नसीनू, मबा, रेवा और लंबासा। इस साल तालेवुनी तसीरी और नांदी फिजी फैक्ट में नहीं खेलेंगी। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
1: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
3: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: अमा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील कर सील
1: टाइट वेरी टाइट

0: 29 मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और वीकेंड जो है कई लोगों का काफ़ी बिजी रहा. एक तो लास्ट वीक धुरंधर 2 नेटफ्लिक्स पर आया, वहीं पर सैफ अली खान की जो पिक्चर है कर्तव्य, ये भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई.
1: आई नो, तो कैसी लगी? आई थिंक आपने देख ली ऑलरेडी ना.
0: हाँ, मुझे अच्छी लगी. आई लाइक सैफ अली खान का काम. और वो एक डिफरेंट डायलेक्ट का इस्तेमाल जो है ये किया गया. कहाँ मुझे पता नहीं कि कहाँ का है. साउंड्स लाइक राजस्थानी और समथिंग, बट या इट साउंड्स वेरी यूनिक. और मुझे अच्छी लगी बेसिकली सैफ का काम. और साथ ही में कुछ लोगों को शायद पसंद ना आई हो, बट हर एक इंडिविजुअल का ये चॉइस होता है ना.
1: अपनी अपनी पसंद भी होती है एंड इट्स टोटली ओके. आपको अच्छी लग सकती है या आपको नहीं भी अच्छी लग सकती है, बट अगर आपने नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज हो चुकी है. यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच इट इन योर स्पेयर टाइम. एंड आपका जो भी यू नो फीडबैक हो वो डेफिनेटली आप चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. यू विल रिकमेंड इट और यू वोंट रिकमेंड इट, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं. तो कर्तव्य नाम है इस मूवी का, नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी. ऑन दी अदर हैंड, आलिया भट्ट इन्होंने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग जो है ये शुरू कर दी है. एंड वाइल शी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन लव एंड वॉर, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली. अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स कहा गया है कि आलिया भट्ट एक स्पेशल एक्सटेंडेड कैमियो जो है ये करने वाले हैं तुम्बाड 2 में, जिसमें सोहम शाह जो है ये दिखेंगे. इनके रोल के बारे में कहा गया है इट्स इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी और इट विल कंटिन्यू इन टू तुम्बाड 3 एज वेल. So, जहां पर she is expected to become one of the main characters alongside Soham Shah. So, तुम्बाड जब आई, आपको तुम्बाड की कहानी पसंद है ना, आपने देखी है ना?
0: हाँ, मैंने नहीं देखी.
1: अच्छा, ओके. तो आपको ये बता दे कि तुम्बाड जो है जब आई थी तब शायद उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला. द फिल्म couldn't do well. फिर उसे री रिलीज किया गया एंड दैट्स व्हेन पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मूवी एंड दे स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड दैट्स व्हेन द मूवी गॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. और तुम्बाड जो है इसके बाद तुम्बाड 2 जिसकी भी शूटिंग चल रही है, आई थिंक एंड ऑफ मई तक फिल्म की शूटिंग जो है ख़त्म हो जाएगी. ये फिर आलिया भट्ट का जो पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड, गेटिंग टू हियर एन ए-लिस्ट एक्टर लाइक आलिया भट्ट बीइंग पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइक दिस जो इनिशियली रिलीज होने पर चली भी नहीं थी और इतनी बढ़िया कहानी थी वैसे इस फिल्म की, तो इट सीम्स लाइक दैट दिस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज इज डन क्वाइट बिग फॉर इटसेल्फ.
0: ओके, लेट्स सी. इस वीकेंड पर मैंने ऐसा कुछ किया दैट आई फाउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग.
1: ऐसा क्या किया?
0: मैंने क्या किया कि मैंने एक इंग्लिश वेब सीरीज जो है वो देखी. इसका नाम उसका नाम है नेमेसिस.
1: इंग्लिश वेब सीरीज देखी?
0: हाँ.
1: नेमेसिस नाम का.
0: हाँ, आई डोंट नो एनी ऑफ द एक्टर्स, मुझे नहीं पता कौन है. एंड एक्शन वाला था, इट वाज थ्री. बट जो ऑडियो है उसका वो मैंने चेंज करके हिंदी कर दिया.
1: ये क्यों? इंग्लिश तो आती है आपको ना?
0: इंग्लिश आती है, बट आई रियली एंजॉयड इट. या आई रियली एंजॉयड वाचिंग इंग्लिश वेब सीरीज विद हिंदी ऑडियो.
1: यू एंजॉयड इट?
0: जिस तरह से उसको डब किया गया था.
1: अच्छा. I kind of don't enjoy dubbed versions of any particular thing. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डबिंग में क्या होता है कि वो पूरी की पूरी लाइन बदल देते हैं और जब लाइन बदल देते हैं तो इमोशंस बदल जाते हैं ना उस पर्टिकुलर डायलॉग के.
0: I didn't find the emotions बदले.
1: हाँ, तो आपके लिए नहीं बदलेंगे, मेरे लिए कहानी थोड़ी अलग है. लाइक आई लाइक टू एक्सपीरियंस एनी मूवी इन द ओरिजिनल ऑडियो, जो भी भाषा है उसकी उसमें. पर उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है बिकॉज़ आई हैव टू कीप अप विद द सबटाइटल्स, यू नो.
0: तो जब मैं ये देख रहा था उस समय पर मैंने सोचा है कि हम पूछेंगे लोगों से कि अगर कोई एक फिल्म चल रही है, जनरली अगर आपको भाषा आती है तो आप उसी भाषा में देखेंगे. इवन दो आई अंडरस्टैंड इंग्लिश में मैं देखता हूँ, बट ये मैंने ऑप्ट किया क्योंकि वॉट एक्चुअली हैपेंड वाज कि जब मैंने शुरू में इसको चलाया तो वो हिंदी में चल गया. आई डोंट नो हाउ.
1: ऑडियो चेंज हो गया.
0: हाँ, ऑडियो चेंज होकर हिंदी हो गया. एंड उसके बाद व्हेन आई वेंट ऑन टू द नेक्स्ट क्या बोलते हैं एपिसोड, वो चेंज होकर इंग्लिश हो गया. लेकिन मुझे हिंदी इतना मजा आया दैट आई वेंट
1: एंड वापस
0: से उसको चेंज करके हिंदी किया. एंड आई वॉच द एंटायर 8 एपिसोड्स इन हिंदी. तो मैंने सोचा कि हम पूछेंगे कि क्या आप ऐसा करते हैं, यू नो, ऑडियो जो है आप कह रही हैं यू डोंट चेंज द ऑडियो.
1: नहीं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए आई थिंक इंग्लिश फिल्मों के लिए या वेब सीरीज अगर मैं कुछ भी देख रही हूँ इंग्लिश के लिए, आई डोंट चेंज इट टू हिंदी. बट जैसे मलयालम फिल्म हो गई या फिर कोई तमिल फिल्म हो गई, तेलुगु फिल्म हो गई, तो शायद मैं उस जगह पे आई चेंज इट टू हिंदी एंड यू नो वॉच इट.
0: अच्छा हाँ, तो आप भी हमें बता सकते हैं कि क्या है इसके पीछे कहानी, और क्या आप ऑडियो जो है ये चेंज करते हैं, खासतौर पर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, क्या आप ऑडियो चेंज करते हैं और यू वॉच इट विद सबटाइटल्स?
1: राइट, तो अपना अपना जो भी एक्सपीरियंस आपका है या जो भी आप करते हैं वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए. क्या आप जब भी कोई नॉन हिंदी फिल्म या कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, एंड प्रोबेबली दैट्स नॉट द स्पोकन लैंग्वेज, वो भाषा आप ना तो बोलते हैं ना तो समझते हैं, या फिर अगर समझते भी हैं तो डू यू डू दैट, लाइक क्या आप उसका जो ऑडियो है ये हिंदी में चेंज कर देखते हैं या नहीं? तो आप अपना जो भी यू नो सिचुएशन है वो हमारे साथ शेयर कीजिए, व्हाट यू एंजॉय वाचिंग और हाउ यू एंजॉय वाचिंग इट, और 5599 पर अपने नाम के साथ भेजिए. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट समथिंग टू से ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Accurate traffic.
5: Checked your KiwiSaver fees lately?
6: Fine weather all day today. Got a high of 18 degrees. Coming in on the southern motorway, we're fine Mataco to the city, just 22 minutes in from there. But a crash further south between Takanini and Hill Road. Very heavy in that section, taking 52 minutes Drury to town. Northwestern, 22 in from Massey, slow around there and close to the city. Northern, slow patches Greville to Esmond, 20 in from Constellation.
5: See what you could save with simplicity. The low-fee, non-profit KiwiSaver provider.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: अभी 20 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और अगर कुछ देर से हमारे साथ शामिल हुए हैं आप वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर और अभी मई का महीना न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ आज एक और आर्टिस्ट जो है ये रहेंगे इस प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग के कुछ मैसेजेस जो हैं ये भी आपके आए हैं राम राम जय माता दी हैप्पी मंडे एवरीवन हैव अ ग्रेट डे मिस्टर मटा मटा थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए
3: और इनके अलावा आज अगर देखा जाए तो हमारे पास अपाहट वेलिंगटन से रोहिणी जी का मैसेज आया है सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा हैव अ ब्लेस्ड मंडे मंडे मॉर्निंग इन्होंने कहा है थैंक यू सो मच रोहिणी जी आपके भी मैसेज के लिए
2: और उसके बाद जय श्री राम भाई विजय एंड पूजा कीप हमिंग हैव अ ग्रेट डे संजेश थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए
3: मॉर्निंग पूजा एंड विजय हर हर महादेव होप यू हैव अ ग्रेट वीक Shiva's blessings upon you. ये हमारे पास बॉबी जी ने भेजा है थैंक यू सो मच बॉबी मान जी आपके भी मैसेज के लिए
2: एंड उसके अलावा गुड मॉर्निंग भाई विजय एंड पूजा सल्लू गल्फ हार्बर फंग परोह से हैव अ ग्रेट डे आपको भी इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए और यू नो मूवीज के बारे में बातें कर रहे थे तो शेरोन का मैसेज आया है आई लव वॉचिंग कोरियन ड्रामा एंड इट्स यूजुअली इन हिंदी ऑडियो एज वी डोंट अंडरस्टैंड कोरियन And I find it very interesting. I've watched so many K-dramas by now and I think everyone at my home enjoys it. You should try as well.
3: K-drama, हाँ मैंने देखा है एक थोड़ी. I don't know, एक थोड़ी. मैंने K-drama देखा है. And I kind of liked it. और वो भी, I think, मैंने कुछ episodes देखे हैं in the original language.
4: A man has 9 sons.
2: Oh. ये कौन था?
4: How many people...
3: ये मैं थी मेरे लैपटॉप में अचानक से यार कुछ प्ले होना शुरू हो गया आई थिंक आई प्रेस सम रॉन्ग बटन्स एंड ऑल हाँ तो मैं क्या बोल रही थी तो मैंने एक देखा है आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन्स ये नेटफ्लिक्स पर है आई रियली एंजॉयड वॉचिंग इट मुझे बहुत पसंद आई वो मैं उतना कोरियन ड्रामा देखती नहीं हूँ बट आई लाइक दिस वन
2: ओके hi Vijay and Pooja very good morning I watch south dub movies with a lot with subtitles in hindi or english ye anil ka message jo hai kya hai to wo south ki film hai I also love watching south movies but wo to main dubbed wali hi dekhta hu
3: likewise
2: mera jo hai ki I don't focus on the subtitles mujhe film ke scenes dekhne acche lagte hain agar डिस्ट्रक्शन हो जाता मेरे लिए
3: सबटाइटल पे ध्यान रखो कि फिल्म पे ध्यान रखो
2: वो मजा नहीं आता मुझे
3: I get that, right. और एक और एक मैसेज आया है परमा महाराज जी का इन्होंने कहा है जय श्री राम विजय और पूजा जी हैव अ ग्रेट डे हर हर महादेव थैंक यू सो मच परमा जी आपके भी मैसेज के लिए नाउ आई रिमाइंडिंग यू ऑल वेरी क्विकली कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारे आस पास होते रहते हैं तो ऐसे में आपके लिए हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बातें लेकर आते रहेंगे बट अगर आपके पास है ऐसा कोई एक्सपीरियंस टू शेयर वट यू रियली एन्जॉय डूइंग एज इन कि आप जब कोई एक ऐसी चीज़ देख रहे होते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस जहाँ पर उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आती है या इट्स नॉट योर स्पोकन लैंग्वेज तो आप उसे क्या यू नो हिंदी ऑडियो चेंज करते हुए या फिर सब टाइटल्स के साथ ओरिजिनल ऑडियो के साथ देखते हैं वट इज़ योर सिचुएशन लाइक वट यू एन्जॉय डूइंग तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं अपने नाम के साथ 5599 पर टेक्स्ट करते हुए
2: और आज 18th ऑफ मई है अगर आपका या आपके किसी फ्रेंड का फैमिली मेंबर का बर्थडे है या शादी की सालगिरह है आप उनको जरूर विश कर सकते हैं एंड वी कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ देयर स्पेशल डे बस अपने मैसेजेस जो है कि आप 5599 पर हमारे पास भेज दें 7:30 बजे के बाद आपको हम विश करेंगे आज ऑन द शो और आपके घर आएंगे लेकिन आपके मैसेजेस जो है कि समय से पहले आ जाने जरूरी है

0: accurate traffic.
1: Cool start, final day with a high of 18. Not fine on the southern motorway south of Monaco. We're fine Monaco to the city, 24 minutes in from there. But we've got a crash before Alfriston. It is blocking lanes 2 and 3. Very heavy, basically dreary 2 there. Probably get off at Beach Road and go around to Great South. You'll be a bit quicker. Northwestern, just slowing down as per usual. Northern, fine, just slow from Greville.
2: Cooking ka asli flavor chahiye? Switch to Kashish Foods Ginger Garlic Paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar free. Sirf clean, natural taste, bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho, ya perfect combo, har dish banegi full of flavor. Aur ha, buy any Kashish dosa batter, any size, aur pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer, 31st May tak. Kashish Foods, eat better, live better.
3: Beds are us with great deals on selected sleepyhead beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds are us Melikao or Pukekohe, where dreams begin.
4: Professional Financials hai saath aapke. Loan or insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
5: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
4: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
5: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
6: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? Switch to Leap Motor C10 और B10 Ultra Hybrid और Electric. सिर्फ 44,990 plus on road से शुरू. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: Breakfast catch up. Throwback.
9: 9 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में. 9 मिनटों के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम आपके लिए लेकर आएंगे और अगले घंटे आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश करेंगे आज जो लोग अपनी सालगिरह मना रहे हैं. लेकिन उसके साथ ये भी याद रखें, खत्म होने वाला है रोवर पर चैटल.
10: बिल्कुल, यानी कि आपके लिए मौके ऑफ विनिंग $100 ईच डे ये भी खत्म होने वाले हैं. सो इसीलिए अगर अभी तक आपने रोवर पर चैटल नहीं खेला है, इट्स स्टिल देयर. एंड इनफैक्ट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट द डेट, इसी संडे तक आपके पास टाइम है बिकॉज दिस संडे इज द फाइनल चैटल का गेम दैट यू कैन प्ले ऑन रोवर. एंड इफ यू हैवन प्लेड इट, जैसे कि हमने कहा, मेक श्योर रोवर ऐप आप डाउनलोड करें, क्योंकि रोवर ऐप डाउनलोड करने से आप हमारे साथ भी बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं एनी टाइम एनी वेयर. एंड ऑन द अदर हैंड ऐसे बहुत से गेम्स हैं जो आप खेलते हुए इनाम भी जीत सकते हैं. चैटल का क्या है कि यहाँ पर ना एक ये एक कीवी वर्ड विजिट गेम है. बेसिकली आपके लिए कोई भी कीवी सेइंग, कोई भी फ्रेज या फिर कीवी वर्ड जो है ये पूछा जाएगा. एंड यू हैव टू क्रैक इट, मतलब उसका मीनिंग क्या है ये आपको बताना होता है.
9: और अगर आप सही सही बता देते हैं तो आपका नाम ड्रो में शामिल होता है. और अगर आप क्लूज वगैरह हिंट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बोनस जो है एंट्री आपको मिल सकती है. सो मेक श्योर रोवा, अगर ऐप आपने नहीं डाउनलोड किया है, यू स्टिल गॉट सम टाइम या आपके पास वक्त है, आप ROVA लिखकर 5599 पर भेज सकते हैं जिससे आपको लिंक मिल जाएगा. यू बेसिकली क्लिक ऑन दैट लिंक और ऐप बड़ी ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं. उसके साथ आज का हमारा व्हाट्स योर टेक 8 बजे के बाद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड एक ऐसी चीज़ के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं दैट अ लॉट ऑफ अस मे हैव गोन थ्रू, या हम में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा. और उसके बाद इट वुड बी इंटरेस्टिंग यहाँ की ये टॉपिक जो है या व्हाट्स योर टेक इज बेसिकली बेस्ड ऑन अनदर स्टोरी जहाँ से हमने इसको पिक किया है. फिर उसके बाद सोचा कि यहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है एंड हर एक का एक्सपीरियंस हो सकता है अलग हो, तो वही आज हम जानना चाहेंगे व्हाट्स योर टेक में 8 बजे के बाद ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
10: सो तैयार रहिएगा. जैसे कि हमने आपको पहले भी रिमाइंड किया है कि जब भी आप हमारे साथ यू नो लाइव होने आकर किसी भी चीज़ में पार्ट लेना चाहते हैं तो कॉल करने के लिए आवर नंबर इज 0800 00 हम 0800 00 4866 जिस पर आप कॉल कर सकते हैं.
9: फिलहाल आज का हमारा पहला थ्रॉबैक, अब एंजॉय करें सोनू निगम से ये गाना आपके लिए हम पेश कर रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। 2004 में आई थी फिल्म खाकी, उसका ये बहुत ही सुपरहिट गाना।

0: weather update.
1: Another fine day in Auckland today. अभी 8 degrees आप feel कर रहे हैं. आज का high 18 overnight, कम से कम 8 degrees एक बार फिर रहेगा. फंगपुरवा के नोट में कुछ हल्की बारिश कभी कभार हो सकती है. Sunset आज का 5:21 PM पर होगा.

0: Go.nz. 3 minute ho rahe hain, 7:00. Welcome to Morning Madness on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. 104.2 FM aur Rover par aap hamara saath de rahe hain. Good morning and welcome.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर जबकि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं इस बार हमारा आज का यू नो मॉर्निंग मैटर्स का ये सफर. तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग. बिफोर आई मूव अहेड या वी मूव अहेड, हमारे पास या मेरे पास बेसिकली एक स्टोरी है दैट आई वाज रीडिंग एंड दिस इज फ्रॉम वेलिंगटन. यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सेज एंड सॉल्ट एंड अ पर्सन नेम शनील कुमार ये इसे ओन करते अपनी वाइफ श्यामा के साथ. इनके बारे में ये स्टोरी जो है ये सामने आई है. इनका कहना है कि शार्प राइज इन वर्ड सप्लायर्स हैव बीन चार्जिंग रेस्टोरेंट्स फॉर रॉ प्रोडक्ट्स, ये बढ़ता हुआ दिखा है. एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड द ओनर ऑफ सेज एंड सॉल्ट, इन्होंने कहा है कि इस वजह से देयर इज अ क्वेश्चन नाउ कि क्या इनका बिजनेस अब सर्वाइव करेगा या नहीं. इन्होंने कहा है कि ही हैज नाउ पेड $50 मोर ईच वीक देन ही डिड लास्ट मंथ फॉर इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम वन सप्लायर. अमंग द बिगेस्ट इंक्रीज इन्होंने नोट किया है द प्राइस ऑफ एग्स, क्रूशियल फॉर इनके रेस्टोरेंट के मेन्यू के लिए. और विद द सप्लायर नाउ चार्जिंग मोर देन $100 फॉर अ कार्टन ऑफ 180 एग्स, विच इज बेसिकली अ मोर देन $8 का राइस जो इन्होंने नोट किया है. इस हाइक की वजह से इनका ये कहना है दैट दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फ्यूल शॉर्टेज कॉज्ड बाय द ऑनगोइंग क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हमास विद सप्लायर्स जो कॉस्ट पास ऑन कर रहे हैं ना. एंड अकॉर्डिंग टू द फिगर्स फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स न्यूजीलैंड जो फ्राइडे को रिलीज हुआ, इन द 12 मंथ्स टू अप्रैल पेट्रोल प्राइसेस वेंट अप बाय 30.1% एंड डीजल प्राइसेस वेंट अप बाय 91.3%. अगर सप्लायर्स ऐसे ही अपने कॉस्ट्स को बढ़ाते रहें तो रेस्टोरेंट ओनर्स या फिर जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके पास चॉइस नहीं रहेगा बट दे'ल हैव टू शट, ये शनील कुमार का कहना है. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इन्होंने अपनी सिचुएशन के बारे में शेयर किया जहां पर इन्होंने कहा कि फ्यूल क्राइसिस हैड ऑल्सो सीन डिक्रीज इन डाइनर्स, जहां पर बिजनेसेस जो है क्या किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं. इट्स रियली रिस्की, इट्स रियली हार्ड. इनफैक्ट इनके बारे में इन्होंने कहा कि अर्लियर दिस मंथ इनके रेस्टोरेंट में सिर्फ एक मील जो है ये बिका था, वन डे वन नाइट जस्ट वन मील. एंड फॉर द पास्ट टू वीक्स इट हैज बीन टेरिबल, वी हैव हैड वन ऑन एवरेज 7 या 8 डाइनर्स ईच नाइट, जिसके बाद इनके स्टाफ का भी कॉस्ट नहीं निकलता है तो बाकी कॉस्ट का तो छोड़ ही दे.
2: My God.
1: So the situation out there is, you know, basically very, very bad. And this time around, अगर आप एक business owner हैं, especially if you run a restaurant या फिर a small food truck and stuff like that, क्या आप हमें बता सकते हैं, if you're listening to us right now, what is it like you for you? ये जो story है हमने share की है of Sage and Salt, a restaurant in Wellington. ऑकलैंड में क्या हाल है? Because over the weekend, I think थोड़ा इधर उधर घुमा भी था एंड उस दौरान एक चीज तो मैंने नोटिस की, देयर आर सो सम प्लेसेस जहां पर पीपल गो एंड एंजॉय सर्टेन टाइप ऑफ फूड, वो बिजी था, काफी बिजी था. पीपल लाइक व्हाट आई सो, पीपल आर गोइंग आउट, दे आर ईटिंग, दे आर स्पेंडिंग देयर मनी. व्हाइल आई वाज लाइक वी वर ड्राइविंग डाउन तो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स का नजारा भी देखा, इट वॉज लाइक क्वाइट फुल एंड स्टफ लाइक दैट. हो सकता है मैं गलत हूँ बट व्हाटएवर आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑन सैटरडे नाइट, उस बेसिस पे आई एम सेइंग. बट व्हाट अबाउट फॉर द बिजनेसेस आउट देयर, आप फर्स्ट हैंड इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप हमें बताइए आपके लिए सिचुएशन कैसा है.
2: 555-999 हमारे नंबर हैं. अगर आप एक बिजनेस ऑपरेटर है, हाउ हैव थिंग्स बीन फॉर यू इन द रिसेंट पास्ट, यू नो जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है या जो कुछ भी चल रहा है, हाउ आर यू डीलिंग विद द सिचुएशन, और क्या ऑब्वियसली हमारे पास उस लेवल पर सॉल्यूशन ढूंढने का नहीं है कि अमेरिका,
1: हाँ, फिलहाल तो नहीं है
2: exactly, कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या होगा. बट मे बी वी कुड थिंक अबाउट, जब आप हमें बताएंगे तो हम अपने ओर से सोच सकते हैं कि हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं अपने बिजनेस कम्युनिटी को इन न्यूजीलैंड. तो
1: देयर इज अ वे दैट वी कैन हेल्प आउट. सैटरडेज को हमारा एक प्रोग्राम होता है ना, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए सिचुएशन फिलहाल है कैसा.
2: Yes, do let us know कि अभी current situation में if you're a business operator, how are you dealing with the situation, business कैसा है. अच्छा जी, तो अच्छा आप बता सकते हैं कि चल रहा है, अगर नहीं तो क्या है, वो आप हमें 5599 पर टेक्स्ट करें.

0: इस आज आपको टाइम पर नहीं मिलेगी एंड यू विल बी अपसेट अबाउट इट।
1: रिशनी टूरिस्ट, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, और उसके अलावा आपके लिए ये भी कहा गया है कि आज का जो ये दिन है, यहाँ पर आपके जो भी इंटरेस्ट है, आपका जो भी इंटेलिजेंस है, इसका इस्तेमाल कर आप मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से यू गेट सम गुड रिजल्ट्स, और किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, ये सलाह भी आपको दी जा रही है आज।
0: मिथुन यानी जय बनाए, आज कुछ नए कॉन्टेक्ट्स आप बना सकते हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, खुशियां होंगी, बॉसेस आपके काम से खुश होंगे, किसी लंबे ट्रेवल पर या तो आप जा सकते हैं या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, और आज आपको और आपके काम को काफी प्रेज भी किया जाएगा।
1: एंड उसकी बात करके ने कैंसर, आज आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपका खुद का बिजनेस है तो इसमें बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे दैट यू कैन डेफिनेटली ग्रैब, एंड इनसे आप बेनिफिट कर सकते हैं। काम जरूर पूरा करेंगे जिससे कि आपको भविष्य में चलकर फायदा होगा। मतलब आज का पूरा दिन आपके लिए हैप्पी जो है ये बीतने वाला है। कुछ जरूरी फैसले भी आप करने वाले हैं जिससे कि भविष्य में चलकर आपको अच्छे रिजल्ट्स हासिल होंगे।
0: सिंह यानी लियो, आज सरकारी सपोर्ट से आपके काम पूरे होंगे, फायदा भी आपको होगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सके आज कोई रिस्क ना लें। ऑफिस में दिन ठीक ठाक रहेगा, घर बाहर खुशियां होंगी आपके लिए।
1: कन्या यानी कि वर्गो, बिजनेस ठीक चलेगा, रिस्क से जितना दूर रहें आज आपके लिए उतना अच्छा। एंड गाड़ी चलाते समय की साथ ही साथ किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल करते समय, आग का इस्तेमाल करते समय आज आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है, आपको हानि पहुंच सकती है, और दूसरों के झगड़े में ना पड़े, ये सलाह आज आपको दी जा रही है।
0: तुला यानी लिब्रा, आपके लिए कहा गया है कि बिजनेस से फायदा होगा, ऑफिस में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, कोई नया काम, कोई बड़ा काम करने की प्लानिंग आज आप कर सकते हैं, और आज हो सकता है कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो है ये आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करें।
1: और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि आज प्रॉपर्टी के मामले में कुछ जरूरी फैसले आप करने वाले हैं, आपको बहुत से मौके मिलेंगे खुद को साबित करने के लिए भी। किस्मत भी आज आपका साथ दे रही है, जिसकी वजह से जो काम आप करने के बारे में सोच रहे हैं उसमें आपके हाथ सफलता जरूर लगेगी, ऐसा आपके लिए कहा गया है।
0: धनु यानी सजिटेरियस, आज किसी से गाइडेंस मिलेगा जिसके वजह से आप अपना काम सक्सेसफुली करेंगे, और ऑफिस में आज कुछ ज़्यादा काम होगा, आपके पास मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, और इतनी ज़्यादा मेहनत शायद आपको करनी पड़े, इतना बिजी डे रहे कि उसका कुछ असर आपके हेल्थ पर भी पड़ सकता है।
1: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है बिजनेस अच्छा चलेगा, बस लेन देन में थोड़ा केयरफुल हो जाए आप, स्पेशली कोई भी ऐसी लेन देन जिसमें पैसे इन्वॉल्व्ड हो और आर्ग्यूमेंट को बढ़ावा ना दे। अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, किसी और का हो रहा होता है, किसी का आपके साथ हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम और चीज़ें ख़राब कर देते हैं, और अक्सर उन ख़राब चीज़ों का भर जाना जो है ये हमें ही करना पड़ता है। तो इसलिए आज के इस दिन थोड़ा संभल कर और सोच समझ कर आप ज़रूर कोई भी कदम उठाएं।
0: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज आपके काम बनते जाएंगे एंड यू विल बी रियली हैप्पी अबाउट इट। कुछ सोशल वर्क करने का मौका मिलेगा आपको, बिगड़े काम आपके बनेंगे, और पार्टनर्स का पूरा सपोर्ट आज आपको मिलेगा।
1: आखिर में मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कुछ नए दोस्त बनेंगे और अच्छी खासी लंबी उम्र तक ये दोस्ती आपकी चलती रहेगी, अच्छी खबर मिलने वाली है आज आपको, मतलब प्रसन्नता ही प्रसन्नता, हैप्पीनेस हर ओर आप जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे, उम्मीद करते हैं कि आपका सभी का दिन बहुत ही अच्छा और बढ़िया और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ रिमेम्बर लेट इन द प्रोग्राम आपके लिए आज हम लेकर आने वाले हैं आज का सेलिब्रिटी अलार्म,
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन।
4: माजे दिए मोमबत्ती है, पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगिए।

0: most wanted.
1: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
2: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: RNZ.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में ऑकलैंड के हौराकी गल्फ में कल दोपहर एक जेटस्की में धमाका होने से उसके डूबने की वजह से दो लोग जख्मी हो गए। मतहुई चैनल के पास हुए इस हादसे के बाद दोनों जख्मियों को पानी से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उन्हें अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक फ्यूल वाइपर लाइन में आग लगने की वजह से जेटस्की के दो टुकड़े हो गए और वो पानी में डूब गई। लेबर लीडर क्रिस हिपकिंस ने साफ किया है कि उनकी पार्टी इसी महीने के बजट से पहले किसी भी बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट पर चुप क्यों है। 2026 इलेक्शंस में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, फिर भी लेबर इस बार पिछले साल की तरह जल्दबाजी में फ्री डॉक्टर्स विजिट्स या टैक्सेस जैसे बड़े ऐलान नहीं कर रही है। हिपकिंस का कहना है कि वो 28 मई को आने वाले बजट का इंतजार कर रहे हैं और सरकार की तरह किसी जल्दबाजी के ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं। सुपर रग्बी कॉम्पिटिशन के अंतर्गत सप्ताहांत जो मैचेस हुए उनके परिणाम इस तरह से रहे। चीफ्स की जीत हाइलैंडर्स के खिलाफ 42-12 से हुई। वारटर्स ने फिजियन रुआ को 50-35 से हराया। हरिकन्स की जीत ब्लूज के खिलाफ 47-24 से हुई और वेस्टर्न फोर्स ने रेड्स को 19-14 से हराया। इसी फ्राइडे को क्रुसेडर्स चीफ्स को होस्ट करेगा, जबकि वारटर्स और ब्रम्बिस का मैच खेला जाएगा। सैटरडे को मोना पैसिफिका रेड्स से खेलेगा, हरिकन्स हाइलैंडर्स को होस्ट करेगा और वेस्टर्न फोर्स की भिड़ंत फिजियन रुआ से होगी। ए लीग का जो फाइनल है इस साल ऑकलैंड एफसी होस्ट करने जा रहा है। ऑकलैंड की जीत एडलेड यूनाइटेड के खिलाफ 3-0 से हुई और दूसरे सेमीफाइनल में सिडनी एफसी की जीत हुई, जिसके बाद अब दोनों टीमों के बीच फाइनल का मैच जो है ये खेला जाएगा। सिडनी एफसी को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स बताया जा रहा है। फाइनल इसी शनिवार की रात 8 बजे से ऑकलैंड में खेला जाएगा, जिस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के न्यूज हेडलाइंस।
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
5: Traffic.
6: Switch to AMI car insurance.
7: Staying final day, just a cool start, a high of 18. A real mess on the southern motorway south of Monaco. A crash earlier between Takanini and Hill Road has still got it very heavy from Drury to there. If you get off at Beach Road, go to Great South, you'll take just about as long, so maybe delay your journey. The motorway's fine from Monaco. Northwestern 34 and from Massey, we're slow all the way from there. Northern 37 from Constellation, heavy from Greville.
6: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
8: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepy head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
9: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only. Starts Thursday.
1: ऑकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary राहत फतेह अली खान live in concert along with शाहजमान अली खान Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6477.
10: Popeyes is turning 2, but you get the presents. Their limited time birthday box is packed with 2 drumsticks, 6 nuggets, and regular Cajun fries for just $11.90. Celebrate 2 years of world famous Louisiana fried chicken at Popeyes.
11: Love that chicken from Popeyes.
12: The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari good brands nahi hai.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Birthday greetings.
5: Iska birthday bhai?
12: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
5: Happy birthday to you.
2: A very very happy birthday. Many many happy returns of the day. Din aaj ka aapko बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. अगर अपना स्पेशल डे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रतिभा तेंदुलकर जी न्यूलिन में आज आप अपनी सालगिरह मना रही हैं, इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं. अ वेरी हैप्पी बर्थडे. जितने भी परिवार वाले हैं या न्यूजीलैंड में और प्रदेश में, सभी आज आपको याद कर रहे हैं और सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं. हम सभी की ओर से भी ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. आपके साथ आज हैप्पी फोर्थ बर्थडे अथर्व शिवम पिल्ले. अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं, बहुत सारा प्यार और दुआएं मिल रही हैं. मम्मी पापा हैं, अक्का हैं आपके, अधीरा ताता पाटी हैं, नाना नानी हैं. दे आर नॉट इनफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ मच वी लव यू आवर शिवम. मे महादेव ब्लेस एंड प्रोटेक्ट यू फॉर एवर. तो आपको शिवम ये दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. हैप्पी बर्थडे प्रिया कुमार, ओटारा में आज अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रही हैं. बेस्ट विशेस आपके लविंग मदर इन लॉ है वीना, साथ में ब्रदर इन लॉ मुनेश, सिस्टर इन लॉ है विनीता, इकलौता बेटा अंकुश है, बेटी अरिश्ता है, पति अमीश है. सेलिब्रेटिंग टुमोरो. ओके, तो कल आप सेलिब्रेट करने वाली हैं, लेकिन सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी प्रिया. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आप में से और भी जितने लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको हम कह रहे हैं एक बार फिर.

0: बस थोड़ी ही देर में न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे, जिसके बाद द रश आवर आपके लिए शुरू होगा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: और ऐसे में आपके लिए, जबकि हम कुछ ऐसी दिलचस्प खबरें भी लेकर आते रहते हैं जिससे कि आपको थोड़ा ऐसे समझ में आए कि अच्छा ये भी एक सिचुएशन है, ये भी हुआ है, या फिर यहाँ पर ये चीज़ें जो है ये फिलहाल के लिए ट्रेंड कर रही है। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गेट यू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, ताकि आपकी जो जर्नी है हमारे साथ ये एक्साइटिंग भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो और इन्फॉर्मेटिव भी हो। इनफैक्ट एक बड़ी कमाल की खबर आपके साथ आई लव टू शेयर, एंड दिस इज अबाउट अ पर्टिकुलर मूवी जिसके बारे में कहा गया है कि इसकी जो एंडिंग है, ये जो आपने शायद फिल्मों में देखी हो उससे थोड़ा हट कर जो है ये सोची गई थी। एंड द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन पीकू। पीकू फिल्म देखी आपने?
0: नहीं, मैंने नहीं देखी।
1: आपने पीकू नहीं देखी?
0: नहीं देखी।
1: ओह ओके, तो अगर आपको मौका लगे कभी एंड यू फील लाइक देयर इज अ opportunity that I can actually try something different from what I normally consume when it comes to entertainment, तो आप ये जरूर देख सकते हैं। It's basically a bit of a slow movie, और जिन लोगों को थोड़ी slow movie पसंद है, थोड़ा story ज़्यादा हो, drama कम हो, ऐसी फिल्में पसंद है, action ज़रा भी नहीं है इस फिल्म में, तो अगर ये आपको पसंद हो तो आप ये ज़रूर देख सकते हैं। Now the interesting thing is कि इस फिल्म के बारे में कि इसकी जो ending है, जिस किस्म से इस फिल्म की कहानी खत्म हुई है, ये अगर आपको याद हो देन यूड बी बेसिकली एबल टू कंपेयर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, बिकॉज एक आर्टिकल में पढ़ रही थी और अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर आर्टिकल कहा गया है कि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार, इन्होंने इसके लिए जो अल्टरनेट एंडिंग है ये सोचा था इस फिल्म के लिए, बट दैट डिडंट हैपन। अपेरेंटली रिवील की एक्टर इरफान खान ने वंस सजेस्ट किया था अ मोर रोमांटिक एंडिंग फॉर पीकू, एंड ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर इरफान प्ले कर रहे थे जिसमें ये इनकी पहली कोलैबोरेशन भी थी। इन द फिल्म्स फाइनल बैडमिंटन सीन जहां पर इरफान वांटेड हिज कैरेक्टर टू गो इनसाइड द हाउस, तो पीकू जो है यानी दीपिका पादुकोण की जो कैरेक्टर है, उन्होंने चीजों को थोड़ा काम डाउन करते हुए खत्म कर दिया था, बट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दे वांटेड टू एंड द मूवी जहां पर इनकी कहानी जो है ये एज अ मोर रोमांटिक मोड जो है ये दिखाया जाए, बट अपेरेंटली ये सजेशन जो है सुजीत सरकार को उतनी पसंद नहीं आई, बिकॉज ही वॉज लाइक अदरवाइज लोग इस फिल्म की मेन कहानी से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, विच वॉज अबाउट द केमिस्ट्री बिटवीन द फादर एंड द डॉटर, कि उनका रिलेशनशिप जो है वो इन्होंने इस फिल्म के जरिए दिखाया था। दैट्स वाई दे केप्ट द एक्चुअल एंडिंग, ताकि जो मेन स्टोरी प्लॉट है, जो लाइन है, उस पर लोगों का अटेंशन बना रहे।

0: weather update.
1: मौसम जनरली आज ठीक ठाक रहेगा. आज का हाई 18 डिग्रीज, ओवरनाइट कम से कम 8 डिग्रीज. फाइन सनी डे ऑकलैंड में आप एंजॉय करेंगे.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
4: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आपके नाम जबकि हम आज के सफर को कर रहे हैं ऑन द रश आवर. चलिए जानते हैं व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ ऑनलाइन.
1: ट्रेंडिंग स्टोरी जो है ये एक रशियन रेस्टोरेंट की है. और नॉर्मली ये ऐसे रेस्टोरेंट्स उतना ट्रेंड नहीं करते हैं, लेकिन इस पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि सब लोग, जब से इनको पता चला है, जो लोग रशिया में हैं, दे हैव बीन विजिटिंग दिस रेस्टोरेंट. इसका नाम है बटरब्रोडिक 66.
4: क्या?
1: बटरब्रोडिक 66
4: रेस्टोरेंट का नाम?
1: हाँ.
4: ये कैसा नाम है
1: भाई? उनका उनके लैंग्वेज में कुछ होगा ना.
4: ओके गॉट इट.
1: हाँ, तो अभी क्या होता है ना कि अभी के टाइम पर बिस्ट्रोस, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जो हैं, ये अलग अलग आइडियाज जो हैं, क्रिएटिव आइडियाज के साथ सामने आते हैं टू गेट अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिशन. इवन छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ही क्रिएटिवली बनाकर. लेकिन रशिया में ये जो रेस्टोरेंट है, इसने आइडिया को एकदम फ्लिप कर दिया है. एंड दे हैव गोन एक्सट्रीम सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. और वो क्या करते हैं, वो एकदम सिंपल, द मोस्ट बेसिक सैंडविच बेचते हैं फॉर अ लिटिल ओवर $1 ईच.
4: ओ वाओ, व्हाट इज ऑल इन दिस, व्हाट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर सैंडविच?
1: तो ये जो रेस्टोरेंट है, जो बेसिक सैंडविचेस हैं, आई डोंट नो बैलोनी क्या चीज होती है, बैलोनी बटर चीज और एग, फॉर एज लिटिल एज $1.36.
4: ओके.
1: और उसके बाद लोगों को जब पता चला इसके बारे में, पीपल आर ऑल, जैसे जैसे उनको फुर्सत मिलती, दे हैव बीन विजिटिंग दिस रेस्टोरेंट.
4: उसकी सादगी के लिए, सिंपलिसिटी के लिए,
1: आई डोंट नो उसकी सिंपलिसिटी के लिए कि $1.36 में एक सैंडविच मिलता है, उसके लिए जो व्हाटएवर द रीजन मे बी, बट डेफिनेटली इट्स वर्किंग फॉर द रेस्टोरेंट.
4: Well, good for the restaurant, yaar. That's really interesting. Ki going so simple, kabhi-kabhi aapke liye beneficial ho jata hai. As in, people start talking about you, and then people start knowing about you. Jiske baad chalkar aapko wo recognition mil jati hai na. Interesting. To chaliye later this hour, वैसे आज का topic bhi aapke liye hum lekar aayenge, and you can let us know what's your take on the topic today. 0800-004-866 पर कॉल करते हुए आप अपने जो व्यूज हैं हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं.

0: Music Month.
1: Pack your backyard needs.
2: न्यूजीलैंड में म्यूजिक मंथ में हम अपने कलाकारों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां से अपने म्यूजिकल करियर को वो और आगे बढ़ा सके। तो पूरे महीने हम अपने लोकल आर्टिस्ट के ट्रैक्स जो हैं ये पेश करते रहेंगे, सुबह 8, दिन में 11, दोपहर 2, शाम 5, रात 10 बजे के बाद एवरी सेकेंड सॉन्ग जो है ये होगा। और आप जब ये गाने सुने तो बस इतना आपको बताना होगा कि डू यू वांट इट ऑन रिपीट और शुड वी स्किप इट। आपके वोट्स जो है ये डिसाइड करेंगे कि गाने और कितने आगे बढ़ेंगे। MM लिखकर अपना जो वोट है ये आप 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और एवरी इंटरेक्शन सपोर्ट करता है आपके फेवरेट आर्टिस्ट को टू गेट इनटू द टॉप 3, जहां पर शानदार इनाम भी ये जीत सकेंगे। आज के हमारे जो कलाकार हैं ये एक इंडिपेंडेंट पंजाबी आर्टिस्ट हैं बेस्ड इन ऑकलैंड और इनका नाम है संदीप लुबाना।
3: ਤੇਰਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਸੁਪਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਪਤਾ

0: पूजा।
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना,
1: और गानों में जब

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: flavor. Or ha, buy any kashish dosa batter, any size. Or pao, 250 grams ginger garlic paste, bilkul free. Limited time offer, 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Danny didn't think he needed a DVS system.
2: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
1: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
2: Nah, only one room. It was just too noisy.
1: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: Beating pump prices is easy with 40% off bus, train and ferry fares for tertiary students.
4: Thanks, driver.
3: With free off-peak travel for seniors who have hot gold cards.
5: Thank you, driver.
3: 40% off and free weekend travel for kids under 16.
4: Thank you, driver.
3: And 50% off for community service card holders.
6: Thanks, driver.
3: Auckland Transport has 7 different fare discounts to make getting around even more affordable. See if you can save by searching AT Fare Discounts.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
9: What's your take?
10: What's your take? Your time ho chuka hai jabki 18 minute ho rahe hain 8 bajkar on the breakfast show with Vijay and Pooja. और व्हाट्स योर टेक में हमने कहा था कि आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बातें करने वाले हैं. और ये एक इंडियन सोलो ट्रैवलर हैं, उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है. हालांकि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है उनके एक्सपीरियंस का और मैं जो आपसे पूछने जा रहा हूँ उसका. तो ये जो शख्स हैं, इन्होंने इनका वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है. एंड ये यूरोप के टूर पर निकले थे और उसके बाद जो उनके साथ हुआ तो उन्होंने कहा कि वो बर्लिन में थे और उसके बाद प्राग जाने की तैयारी थे कर रहे थे, जब उनके एक फॉलोअर जो हैं इन्होंने इनको मैसेज किया कि वो म्यूनिक आए और उनके घर पर रहें. तो जो ट्रैवलर हैं इन्होंने सोचा, गौतम इनका नाम है, वो राज़ी हो गए कि भाई इसी दौरान ऑस्ट्रिया को भी कवर कर लेंगे. लेकिन उनका कहना है कि उनका एक्सपीरियंस जो है इट टर्न्ड अनकंफर्टेबल फ्रॉम द मोमेंट ही अराइव्ड एट द फॉलोअर्स होम. रात काफ़ी देर उनके घर पहुंचे और उन्होंने अपने वीडियो में बताया, उसने ना ही मुझसे पानी पूछा, खाने की तो दूर की बात है. और ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम आउटसाइड एक्सप्लोरिंग, और वापस उसके घर पर सिर्फ सोने के लिए जाते थे. सचदेवा ने कहा या गौतम ने कहा कि उनका सिचुएशन एस्केलेट हुआ जब उन्होंने सोचा कि मैं एक रात और एक्स्ट्रा रुक जाऊंगा क्योंकि उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड म्यूनिक. और उन्होंने कहा कि वाइल ही वॉज लीविंग अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर हिज ट्रेन, तो फॉलोअर ने दरवाजे पर उनको रोका और उससे कहा कि वो उनको 30 यूरोस पे करें एज रेंट. तो उन्होंने कहा इफ़ यू हैड स्टेड इन अ हॉस्टल, आप वहाँ भी पैसे देते. ही सेड उसने मना कर दिया पैसे देने से क्योंकि वो वहाँ पर रुकने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि फॉलोअर ने उनको इनवाइट किया था. बाद में चलकर उस फॉलोअर ने उनको थ्रेटनिंग मैसेजेस वगैरह जो है ये भेजे और द सिचुएशन जो है ये एस्केलेट हुआ उन दोनों के बीच. तब ये जब कहानी में पढ़ रहा था उस वक्त मैंने सोचा कि हम में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे व्हेन वी फर्स्ट मूव्ड टू न्यूजीलैंड, शायद हम आकर अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शुरू शुरू में हमने रहना शुरू किया एंड इवेंचुअली व्हेन वी सेटल डाउन वी मूव्ड इनटू ऑनटू आवर ओन. तो वो एक्सपीरियंस जो है कैसा होता है लोगों के लिए व्हेन यू कम टू अ न्यू कंट्री. ये तो खैर किसी अनजान व्यक्ति के घर में ठहरे थे, लेकिन जब आपके अपने परिवार वाले हैं या दोस्त हैं आपको एनकरेज करते हैं कि आप आ जाओ, जिस भी कंट्री से हम आए होते हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जहाँ से भी हम आते हैं कि हमको काफ़ी एनकरेज करते हैं, यू कम डाउन टू न्यूजीलैंड, बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, वो सारी चीज़ें आप फिक्र करते हैं, आकर हमारे यहाँ रुको, है ना, हमारे पास घर है, सब कुछ है, एंड वंस यू सेटल डाउन यू कैन मूव आउट एंड अपना खुद का घर आप ले सकते हो, चाहे खरीद सकते हो, रेंट पर ले सकते हो, व्हाटएवर इट मे बी. तो अगर आप उनमें से एक हैं

0: जिन्होंने ये फेज देखा है अपनी लाइफ में, तो आपका एक्सपीरियंस जो है ये कैसा रहा है, ये आज हम आपसे जानना चाहते हैं। वेयर यू माइट हैव स्टेड विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स व्हेन यू इनिशियली मूव्ड टू न्यूजीलैंड, व्हाट वाज इट लाइक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार वालों से, दोस्तों से काफ़ी दिनों तक जब हम मिलते नहीं हैं क्योंकि हम अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, तो एक ऑकवर्ड सी फीलिंग जो है कि आती है जब आकर हम रहना शुरू करते हैं। कुछ कुछ लोग तो बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं हर एक सिचुएशन में और कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। कुछ लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जहाँ पर उनके फैमिली फ्रेंड्स ने बहुत ख्याल रखा उनका और उनको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प आउट किया। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऑन दी अदर हैंड शायद ऑपोजिट हो, तो वही हम आपसे जानना चाहते हैं। आओ 800-00 हम आओ 800-00-4866 ये हमारा नंबर है जिस पर अब आप कॉल कर सकते हैं और जो भी एक्सपीरियंस आपका है या जो भी आपने देखा है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो।
1: गुड मॉर्निंग
0: जी, कैसी हैं आप मैम?
1: ठीक है बहुत अच्छा
0: जी।
1: अच्छा, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। व्हेन माय हस्बैंड फर्स्ट केम, अपन कजन सिस्टर संगे रहे थे, ही स्टार्टेड जॉब स्ट्रेट अवे व्हेन ही केम ऑन सैटरडे, मंडे से स्टार्ट द जॉब एंड देन काम से आके ही यूज्ड टू क्लीन फॉर हिज सिस्टर, उसका क्लीनिंग बिजनेस था, तो दे वुड टेक हिम क्लीनिंग लाइक 11 AM 11 PM से लेके समटाइम्स 12 AM एंड दे डोंट पे हिम एनीथिंग, बट जस्ट बिकॉज ही वाज स्टेइंग विद देम एंड दैट इज हाउ ही कंट्रीब्यूटेड, लाइक ही हैड टू गो फ्रॉम 5 to 12 AM एंड स्टार्ट क्लीनिंग। एंड देयर इज अनदर थिंग टू दिस, व्हेन वी हैड सम फैमिलीज कमिंग ओवर टू स्टे विद अस, तो उलगन हमारे संगे 8 months रहा, कोई 3 years रहा, एंड देन वन ऑफ माय हस्बैंड ब्रदर ही वाज हियर फॉर 8 months उसके फैमिली आए से पहले, एंड ही यूज्ड टू ईट एंड लीव द प्लेट वेयर ही ईट लाइक टेबल पे रखे एंड देन ही वॉक्ड अवे, सो माय हस्बैंड हैड टू टेक हिज प्लेट एंड वॉश इट फॉर द पास्ट 8 months ही डिड दैट, एंड आई सेड व्हेन वी आर कुकिंग ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू एनीथिंग, बट तुम उसके आगे से प्लेट उठाई के एंड देन वी टेक इट बैक, एंड देन देयर वाज सम अदर फैमिलीज आई डोंट वांट टू मेंशन, दे मे बी लिसनिंग बट या इफ दे लिसनिंग दैट बेटर फॉर देम, बट उल अगेन दे केम एंड स्टेड विद अस एंड या द सेम सिचुएशन, वी हैड टू डू एवरीथिंग फॉर देम, सो वी डिडंट माइंड एक्चुअली, दैट वाज द अदर वे, बट व्हेन माय हस्बैंड केम एंड ही हैड टू क्लीन।
0: इंटरेस्टिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस जो है ये शेयर करने के लिए। गुड मॉर्निंग, हेलो।
2: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ
0: जी।
2: आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा दिया और बहुत सेंसिटिव भी है आई गेस, बट यू नो ये रियलिटी है लाइफ की कि आप कभी ना कभी या आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी, आई थिंक स्पेशली अगर आप किसी और कंट्री से किसी और कंट्री में जा रहे हैं सेटल होने के लिए, तो ये सिचुएशन जो है वो आपको फेस करनी ही पड़ती है। एंड अभी आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द कॉलेजेस कॉल्ड बिफोर, आई थिंक ये हमारी ह्यूमन मेंटालिटी है कि अगर हम किसी के लिए कुछ करने जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन पहले से ही हाई हो जाती है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें बदले में ये होना चाहिए। तो आई थिंक माय टू सेंस टू इज दिस, आई हेल्प्ड लॉट ऑफ पीपल, my own family and unke friends and stuff, lekin you know agar aap karna nahi chahte ho to aapko pehle se hi wo baat bahut acche se clear kar deni chahiye ki aap nahi karna chahte ho, ya fir agar aap kar rahe ho to wo expectations pehle se clear kar deni chahiye ki acha aap aa rahe ho, aap hamare paas rahoge, hum aapko expect nahi karte hain ki aap pay karo because aap new hai country ke liye, but we do expect you to you know put your hand into work and things like that. मुझे लगता है अगर एक्सपेक्टेशन शुरू से साफ साफ हो जाए दोनों में तो वो रिश्ते कभी खराब नहीं होते हैं क्योंकि आपने पहले से वो बात बताई हुई है, लेकिन जब आप किसी को बुला लेते हो घर पर और स्पेशली अगर वो आपकी फैमिली मेंबर हैं और आपने उनसे कोई बात पहले से करी नहीं है एंड सडनली आपका बिहेवियर ओवर टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हो कि प्लेट नहीं धोई है और आपको लग रहा है कि ओ ये खाना नहीं बना रहा है या कपड़े नहीं धो रहा है या वट एवर यू नो हाउस चोर्स या पे नहीं कर रहा है किसी तरह से, तो उस इंसान की भी कोई गलती नहीं है जो आपके घर आया, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये तो मेरे अपने फैमिली मेंबर है, मैं इनके साथ रहने आया हूँ, इन्होंने मुझे ऑफर किया है, और आपकी ये हो जाती है कि सारे काम मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे से क्यों हो रहा है, हम ही क्यों कर रहे हैं सब चीज, हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे डूइंग इट. तो आई थिंक वो सिचुएशन अगर हम पहले से क्लियर कर दें तो रिश्ते भी बने रहते हैं और आप किसी की हेल्प भी कर लेते हो और एक्सपेक्टेशंस राइट रहती हैं. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं किसी से तो वो कुछ गलत है, बट इट्स जस्ट दैट यू नो कि अगर आप पहले से वो सारी बातें क्लियर कर लो तो आपके रिश्ते जो हैं वो सही हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान जो नया है उसको तो कुछ नहीं मालूम है, और आप इस दुविधा में पहले से फंसे हो क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ की लाइफ में आपको काम करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट हो एंड देन यू हैव समबडी सिटिंग ऑन योर हेड, राइट? तो आपकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप पहले से सब चीज क्लियर साफ रखो तो आप किसी की हेल्प भी कर दोगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी हो जाएंगी और आपके रिश्ते भी बने रहेंगे और वो फिर लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे. तो कल को अगर वो इंसान मूव आउट करके कहीं बाहर जाता भी है, वो आपको याद रखेगा कि उसके काम टाइम पर आपने उसको हेल्प किया था, इवन तो वो आपको चाहे पे कर रहा था या आपको किसी चीज से हेल्प कर रहा था, बट वो स्टिल वो रिमेम्बर रखेगा. लेकिन अगर आपने वो खटास डाल दी रिश्ते में, तो वो जो आपका जो काम किया ना, आपने 5-6 महीने उनको रखा, 8 महीने रखा, वो पानी में चला गया, यू नो, उसका फेवर अब वो कभी नहीं सोचेगा, वो इनफैक्ट बाहर जाके सबको बोलेगा मैं उसके घर रहा था, ऐसे हुआ वैसे हुआ. तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन एज ए ह्यूमन बींग यस सबकी होती है, लेकिन क्लियर करनी बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से.
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, वेरी वेल सेड. 800-00 हम, किसी ने मैसेज किया है, वॉज अ वेरी हेल्थी एंड गुड एक्सपीरियंस. आई डोंट नो कि आप किसी के घर पर रहने गए थे क्या, आपने किसी को हेल्प आउट किया था, जो भी था, लेकिन आपने इतना बताया कि एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा था. आपके पास भी अगर कुछ है शेयर करने को तो आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जब हम नई कंट्री में आते हैं और हमारे दोस्त या हमारे परिवार वाले रिश्तेदार पहले से उस कंट्री में होते हैं और वो हमको इनकरेज करते हैं कि आ जाओ, डोंट वरी, विल हेल्प यू गेट थिंग्स ऑफ द ग्राउंड, आपको लाइफ यहाँ शुरू करने में हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस फैमिली का कोई एक ही मेंबर आता है, बाकी मेंबर्स बैक इन द होम कंट्री होते हैं, एक ही आता है कि चलो मैं जाकर यहाँ पर काम शुरू कर दूँ और उसके बाद एज सून एज आई सेटल डाउन, घर वर देख लिया, देन बाकी लोगों को मैं बुला लूँगा, अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को, अपनी पति को, अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को, जो कुछ भी हैं उनको मैं बाद में बुला लूँगा, एंड दे कैन जॉइन मी हियर. और फिर जब आप आते हैं अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर के घर पर रहते हैं, कहीं कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा, हर एक का एक्सपीरियंस जो है कि अलग होता है, हर एक शख्स जो है अलग एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसी एक्सपीरियंस के बारे में या फिर उसी चीज़ के बारे में मुझे ख्याल आया जब मैंने गौतम की ये कहानी पढ़ी. हालाँकि मैंने पहले भी जैसे कहा कि उनकी कहानी में और हमारे यहाँ की दैनिक ज़िंदगी में, डेली लाइफ स्टाइल में या लाइफ में कोई रिलेशन नहीं, वो अनजाने स्ट्रेंजर के घर पर जाकर ठहरे थे और यहाँ हम अपनों के घर पर आकर ठहरते हैं या अपनों को हम रहने के लिए जगह देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं जब वो यहाँ पर आते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है बोथ द होस्ट के लिए, अगर आप एक होस्ट रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अगर आप आकर अपने किसी फैमिली मेंबर के घर पर रहे हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. 5599 हमारा नंबर है. वी लुक फॉरवर्ड टू यू नो रीडिंग सम मैसेजेस कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा.
3: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम. ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: आपको हम बताते हैं हर दिन क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में। इसकी जानकारियां हम पर आपके लिए होती है। द फाइव मिक्स इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ग्रैंड मस्ती नाइट, और ये इसी वीकेंड होने जा रहा है नेटबॉल होल ब्राउन्स रोड मनुरेवा में, जिसमें फिजी से आ रहे हैं बहुत ही जाने माने रेडियो पर्सनैलिटीज एस एन जय भैया जी, और साथ में यहाँ के राउडी नमन रहेंगे। डांसिंग लेजेंड चर्फर वापसी कर रहे हैं टू द स्टेज इन न्यूजीलैंड आफ्टर 17 लॉन्ग ईयर्स, और यहाँ पर मसाला मिक्स स्किट्स आपके लिए होंगे। कॉमेडी, डांस, मस्ती, डुअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा ये रहेंगे, मोंटो मोनिका युवा डांस ग्रुप, बहुत सारे डीजेस जो हैं ये भी लाइव ऑन स्टेज परफॉर्म करने वाले हैं ग्रैंड मस्ती नाइट में। तो ये बहुत ही स्पेशल ओकेजन जो है ये रहेगा इसी वीकेंड पर, और बहुत हमारे अपने केतन जो है ये भी परफॉर्म करने वाले हैं ग्रैंड मस्ती नाइट में। बहुत सारे गिव अवेज जो हैं ये भी जीतने का मौका आपके पास होगा। मलबा गोल्ड एंड डायमंड वाउचर्स, रॉयल गोल्ड हैम्पर पैक्स, ग्रीन हॉर्न गिफ्ट हैम्पर्स ये भी आप जीत सकेंगे। विकेट चिकन बॉटनी डाउन्स की ओर से फूड वाउचर्स जो है ये भी जीतने का मौका होगा आपके पास।
4: तो ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन साथ में बता दें आपको कि यहाँ पर पार्किंग आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, एंड ऑन साइट जब इवेंट रहेगा यहाँ पर फूड एंड ड्रिंक्स जो है ये भी सर्व किया जाएगा, सेल किया जाएगा, माफ कीजिएगा, सेल किया जाएगा विद फुल सिक्योरिटी। आप इस इवेंट का मज़ा जो है ये एंजॉय कर सकते हैं। टिकट्स अगर नहीं लिए हैं तो ग्रैब देम एएसएपी, हंटर्स पूटान पापाटोयटोय, जेईस फ्रेश मार्ट पापाटोयटोय, गेट फ्रेश सुपरमार्केट इन मैंगरी, केस हेयर इन ब्यूटी सलून मनुरेवा, और विकेट चिकन बोटनी डाउन्स ब्रांच जहां पर आप जाकर ये टिकट्स ले सकते हैं, प्लस जेंडा हेयर एंड ब्यूटी सलून कैवेंडिश से भी, या कैवेंडिश ड्राइव यहां से भी आप टिकट्स ले सकते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है ये कि द इवेंट वाइब मिक्स की ओर से इट्स हैपनिंग दिस सैटरडे।
3: आपके पास भी कम्युनिटी की कोई खबर है जो और लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं, buzz@hamfm.com, buzz@hummfm.com पर अपने ईमेल्स आप हमें जरूर भेजें।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Hey, देखो हम आ गए।
0: You get money, get cash. New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 19 मिनट हो रहे हैं 9:00 ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और यू नो हमारी दुनिया इतनी अजीब है और इस दुनिया में कमाल की बात है कि इतने सारे इतने इंटेलिजेंट लोग रहते हैं.
3: सो तो है, तो कमाल की बात कैसी हुई वो?
2: नहीं, अरे कमाल की बात कि लोग ऐसी चीजें कर देते हैं या बोल देते हैं जो शायद हम सोच भी नहीं पाते. आपने कभी ऐसा किसी शख्स को देखा है?
3: हाँ, बहुत बार. आई थिंक सबसे ज्यादा कमाल बच्चे करते हैं. दैट्स माय ऑनेस्ट रिएक्शन आई वुड से. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जब कभी कभी ऐसी बातें जो कर देते हैं जो हमें सोचने पर भी मजबूर कर दे और मतलब हंसने पर भी मजबूर कर दे.
2: हाँ, लेकिन बच्चों को दुनियादारी के बारे में पता नहीं होता है, लाइफ के बारे में पता नहीं होता. लेकिन कुछ बड़े बड़े लोग जो हैं उनके भी बहुत ही कमाल की चीजें होती है ना.
3: बिल्कुल,
2: उनके क्रिएशन. अभी मैं आपको दो तीन लाइनें सुना रहा हूँ, यू हैव अ लिसन टू दिस. और उसके बाद आप हमें बताइए कि ये शख्स जो है आपके नजरिए से कितना इंटेलिजेंट बंदा. हाँ, ये हाउ इंटेलिजेंट इज दिस पर्सन?
4: आई स्टे अवेक.
2: अच्छा, एक बार फिर जो पहला.
5: व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन अ बेस्ट फ्रेंड?
4: आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रेंड हु इज लुकिंग फॉर अ फ्रेंड.
5: How do you find peace of mind?
4: I find peace by being at peace with peace.
3: Nice, yeah.
5: How do you start your day?
4: I start my day by starting my day.
5: What is the best way to learn?
4: The best way to learn is to learn how to learn.
3: Nice.
4: My favorite memory is a memory from one of my memories.
2: बहुत ही कमाल ना, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है.
3: पर बात तो सच बोल रहा है ना. एब्सोल्युटली ट्रू. एक एक शब्द जो बोला है वो सब सच ही तो बोला है.
2: हाँ, वो तो है, बिल्कुल सच बोला है.
3: बिल्कुल सच बोला है. तो इंटरेस्टिंग ऐसे होते हैं बच्चे और लोग.

0: होते हैं ऐसे, इनफैक्ट कुछ इतने इंटेलिजेंट दैट एक्चुअली मेक यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, स्पेशली लाइफ को लेकर. अच्छा हमारे पास, आपके पास, आई मीन हमारे पास आपके लिए भी कुछ है, इनके जैसी हो गई मैं. और ये कुछ जो है आपको दरअसल एक विनर बना सकता है. नाउ व्हाट हैव वी डन इज कि हमने हमारे फेसबुक पेज पर आपके लिए एक पोस्ट किया है, और इस पोस्ट में राहत फतेह अली खान, इनके गाने का एक कोई बहुत पॉपुलर गाना है इसका, लेकिन इसके बोल नहीं पोस्ट किए हमने, बोल को तो ऐसे थोड़ा इमोजीज के रूप में पोस्ट किया है. आपको क्या करना है, हमारा जो फेसबुक पेज विजिट करना है, इस पोस्ट को देखना है, और जैसे ही आपको ये पोस्ट देखते हुए गाने का पता चल जाए कि ये कौन सा गाना है, कमेंट सेक्शन में आपको इस गाने का नाम जो है, टाइटल जो है, ये लिखना है. एंड वंस यू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द पोस्ट, तो आप हमारे साथ इस ड्रो में शामिल हो जाएंगे, जहां पर अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू विन 2 double passes. मतलब दो विनर्स होंगे, एक को एक डबल पास मिलेगा, एक को एक डबल पास मिलेगा, बट टोटल ऑफ 4 passes, विच मीन्स 2 double passes हम गिव अवे कर रहे हैं. सो रिमेम्बर द वेट इज फाइनली ओवर, क्योंकि राहत फतेह अली खान इज ऑल सेट टू टेक द स्टेज इन ऑकलैंड ऑन द 25th of July. ये ट्रस्ट एरिना में लाइव परफॉर्म करने वाले ऑन द नाइट विद सम अमेजिंग पावरफुल वोकल्स, खूबसूरत कवालियों के साथ साथ कुछ सूफी नगमे, और उसके साथ बॉलीवुड के इनके कुछ कमाल के गाने जो है आपके लिए परफॉर्म करेंगे. एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू विटनेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस, जो गाने के मामले में, म्यूजिकल जर्नी के मामले में आप इंजॉय कर सकते हैं. ब्रॉट टू यू बाय JK स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन. पिछली बार जब ये ट्रस्ट एरिना में आए थे परफॉर्म करने के लिए, तो बहुत बहुत कमाल का परफॉर्मेंस इनका रहा, जिसके बारे में लोगों ने कई हफ्तों तक बातें की. दे कुडंट कम आउट ऑफ दैट मैजिकल नाइट वाला मोमेंट. एंड ऑन द अदर हैंड, आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने ट्रस्ट एरिना में सबसे ज्यादा क्राउड इकट्ठा किया है इन रिगार्ड्स विद परफॉर्मेंस. तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू विटनेस हिम परफॉर्म लाइव. dryTickets.com से टिकट्स ले लें, और अगर टिकट्स जीतने का आपका शौक है तो जल्दी से विजिट करें हमारा फेसबुक पेज, हम 104.2 FM. वहां पर एक सिंपल सा पोस्ट है विच रीड्स विन 2 double passes, गेस विच राहत फतेह अली खान सॉन्ग इज दिस, ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स, और नीचे इमोजीज पोस्टेड है. आप जैसे उन इमोजीज को देखोगे, इफ यू कैन फिगर आउट कि ये कौन सा गाना है, तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दे आप, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ. इट्स दैट सिंपल.
1: I know the song. शुरू में I was having some difficulties.
0: बहुत इजी है, हमने एकदम सिंपल गाना रखा है, I mean simple emojis रखे, और most popular, one of the most popular songs है राहत फतेह अली खान ये.
1: Yes, तो अब आप विजिट करें हमारा फेसबुक पेज, और अगर आपको लगता है कि इन emojis से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन से गाने का टाइटल है, तो गाने का टाइटल कमेंट सेक्शन में आप डालें, और डबल पासेस आप जीत सकते हैं टू वॉच उस्ताद राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट. और ये अपॉर्चुनिटी जो है ये हम आपको दे रहे हैं. याद रहे ये रहेंगे 25th July को एट द ट्रस्ट अरीना, जैसे आपने कहा टिकट्स ड्राई टिकट्स पर अवेलेबल है. थोड़ी देर बाद देखेंगे आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गाने को सही पहचाना है.
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम. ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
2: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's apply.
3: Beating pump prices is easier than ever for seniors, students, kids, community service card holders and others. Auckland Transport has 7 different discounts to make getting around more affordable. See if you can save on travel by searching AT Fare Discounts.
4: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: What's going on?
8: 24 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में और व्हाट्स गोइंग ऑन में आपका स्वागत हम कर रहे हैं। अभी वक्त है कि देखें आप में से कितने लोगों ने जवाब जो है ये अपने भेजे हैं, जो इमोजी के थ्रू सॉन्ग आपको आइडेंटिफाई करना था हमारे फेसबुक पेज पर। भावना देसाई हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। भावना के बाद नीतिका कुमार हैं, रेणु भाटिया हैं, दिवनेश साथ में चहक हैं, आपने अपना जवाब जो है ये हमारे पास भेजा है। साथ में ऐश आपका आंसर आया है, नायशा शर्मा थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए भी, सलमा हैं, आरती अर्चना हैं, संप्रीति हैं, एडवर्ड हैं, आप सभी ने अपने आंसर्स जो हैं ये अभी तक जाकर पोस्ट किए हैं। सही हुए तो आपके नामों को ड्रो में शामिल किया जाएगा।
9: क्या मतलब फटाफट लोगों ने अपनी एंट्री दी है इसके लिए। इट शोज कि देखो ना, ऐसा नहीं कि आप हमें सुनते नहीं, आप सुनते हमें ज़रूर है, लेकिन आप बड़े चलाक हो, आप वो चीज़ें करते हो जो आपका दिल करता है करने के। यही जगह भी कोई जीके का क्वेश्चन है पूछते ना तो सिर्फ एक दो आंसर्स आते। बट वी आर ग्लैड दैट एटलीस्ट यू आर टेकिंग पार्ट। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है, दीज पासेस दैट वी आर गिविंग अवे फॉर द लाइव कॉन्सर्ट जो राहत फतेह अली खान का रहेगा इन ऑकलैंड 25th of July, स्पेशली फॉर यू। और जीतने के लिए आपको अपनी एंट्री तो हमारे साथ रजिस्टर करानी होगी। एंड फॉर दैट रिमेंबर विजिट आवर फेसबुक पेज। आप हम 104.2 FM विजिट करेंगे फेसबुक पेज हमारा विद द ब्लू टिक, वहां पर आपको सबसे जो लेटेस्ट पोस्ट वही दिखेगा। और अगर इसके बाद कुछ पोस्ट होते भी हैं तो आप हमारा जो फीचर्ड फोल्डर है वहां पे देख सकते हैं। इमोजीज आर पोस्टेड देयर, बस उन इमोजीज को क्रैक करना है आपको और बताना है कि ये कौन सा गाना है राहत फतेह अली खान का।
8: फिलहाल अभी कुछ और खबरें आ रही हैं। पुलिस नॉर्थलैंड के एक ग्रामीण इलाके में एक प्रॉपर्टी में ओवरनाइट एक व्यक्ति की लाश मिलने वाले मामले की छानबीन कर रही है। कल रात तकरीबन 9 बजे को इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया गया वाईमामाकू में, जहां पर इस व्यक्ति को मृत पाया गया। डिटेक्टिव सीनियर सर्जेंट क्रिस्टन फौही का कहना है कि सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द डेथ अभी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है और वहां क्या को हुआ था इसके बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आज जो प्रॉपर्टी है उसका सीन एग्जामिनेशन होगा, साथ में लाश का पोस्टमार्टम जो है ये भी किया जाएगा। उसके अलावा एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर क्रैश में दो लोगों की जानी गई है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक क्वींसटाउन के नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी रिमोट टेरेन में ये हेलीकॉप्टर जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ कल, जिसकी वजह से दो लोगों की जानी गई। इमरजेंसी सर्विसेज को इस दुर्घटना के बारे में तकरीबन 10 बजे के वक्त सुबह जानकारी दी गई। विद द एयरक्राफ्ट क्रशिंग इन टू ए माउंटन साइड इन रगड टेरेन ओटागो के बैक कंट्री में। और कल शाम पुलिस ने एक स्टेटमेंट जो है ये इशू किया जिसमें ये कन्फर्म किया गया कि हेलीकॉप्टर को चार्टर किया गया था एक हंटिंग एक्सपेडिशन के लिए एट द टाइम ऑफ द क्रैश। जो दो लोग इस घटनास्थल में मारे गए विद द सोल ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हेलीकॉप्टर, ये डिटेक्टिव सर्जेंट सारा वो ने बताया है। थ्री आदर्स फ्रॉम द हंटिंग ग्रुप, इनको लोकेट किया गया ऑन द ग्राउंड और इनको सुरक्षित लाया गया है। मैरीटाइम न्यूजीलैंड के रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इनिशियली इस रेस्पॉन्स को लीड किया और बाद में चलकर इसके बारे में और जानकारियां जो हैं ये रिवील की गई हैं।
9: और इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम जो है ये सामने आया है जिससे कि आप डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके कीवी सेवा के थ्रू आपको मिल रही है। नाउ व्हाट विल हैपन इज़ कि आपके लिए ये स्कीम जो है एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पर यू कैन अर्न सम फ्री मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। How then does that work? अगर आप अपने कीवी सेवा अकाउंट में $1,042.86 करते हैं इन फ्रॉम 1st of July से लेकर 30th of June तक, विच इज़ 1st July 2026 एंड 30th June 2027, जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है ये आपको एक्स्ट्रा $260.72 देगा बिल्कुल मुफ्त में। दैट वर्क्स आउट टू बी अबाउट $20 अ वीक सेविंग्स के हिसाब से, प्लस अ गवर्नमेंट बोनस एज वेल। अगर आप इससे कम कंट्रीब्यूट करते हैं यू स्टिल गेट पार्ट ऑफ द बोनस, नॉट द एंटायर अमाउंट बट पार्ट ऑफ इट। बट इफ यू मिस द 30th of June का डेडलाइन यू लूज द चांस टू गेट दैट मनी फॉर द ईयर। So make sure you get your employer contribution. अगर आप काम करते हैं तो your employer usually must contribute at least 3% to your Kiwi Seva, but you can get it if you are contributing too, क्योंकि आपका contribution भी जाएगा ना। और इसके अलावा कुछ employers may even contribute more than that minimum के से भी ज़्यादा, but it depends. Now tip for जो self-employed लोग हैं उनके लिए कि अगर आप खुद के लिए काम करते हैं don't get an employer contribution, but there may be tax benefits जो आपके structure के लिए आपके payments के हिसाब से correctly आपके लिए काम कर सकते हैं। You check your Kiwi Seva fund type. There are different fund types जिसमें conservative funds है safer but slower growth, और growth funds है more ups and downs but it can earn much more over time. और इसके साथ साथ आपको बताएं कि अगर आप कंजर्वेटिव फंड का इस्तेमाल करते हैं देन इफ़ यू नीड द मनी सून लाइक बाइंग अ हाउस तो ये आपके काम आ सकता है। इफ़ यू यूज ग्रोथ फंड्स तो ये रिटायरमेंट में स्टिल मेनी इयर्स अवे, इफ द रिटायरमेंट इज लाइक मेनी इयर्स अवे तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे ये काम आ सकता है। सो बेसिकली इफ यू कॉन्ट्रीब्यूट द गिवन अमाउंट विद इन द गिवन टाइम तो सरकार की ओर से फ्री में पैसे मिलेंगे आपको। $260.72 माइट नॉट साउंड दैट बिग, बट अगर मुफ्त में मिल रहे हैं तो बिग ही है ना।
8: ऑब्वियसली अभी के टाइम पे तो एवरी सिंगल सेंट मैटर्स, तो आप चेक कर सकते हैं। अभी 17 मिनट रह गए हैं 10 बजने में।

0: अभी 11 मिनट रह गए हैं 10 बजने में। 11 मिनट के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट। फिलहाल दो बातें आज की। कहते हैं जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की।
1: बिल्कुल सही। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपका पेशेंस जो है इसका टेस्ट तो डेफिनेटली होता ही होता है, और अगर आपके पास सब कुछ हो तो फिर आपके बिहेवियर की, आप किस तरह का बर्ताव करते हैं लोगों के साथ, इट रियली एंड ट्रूली मैटर्स ना।
0: एग्जैक्टली। दूसरी बात, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं।
1: ओके, एक बार फिर से।
0: प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं।
1: ओके, उम्मीद है कि आप इन दो बातों का ख्याल जरूर रखेंगे, अपनी लाइफ में से इम्प्लीमेंट करेंगे टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स, और टू गेट द बेस्ट पॉसिबल लर्निंग्स, सीख जो होता है ना लाइफ के मामले में, ये आपको मिले। और चलिए इन्हीं के साथ साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत, जाने का समय हो रहा है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अब कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजन पूजा लेकर आपके साथ जुड़ जाएंगे।
0: तो इंतजार कीजिएगा, आप तो जा रही हैं लेकिन मैं तो अभी रुकने वाला हूँ।
1: आज थोड़ा लंबा रुकेंगे ना।
0: I'll have a little bit more time here, so stay with me, थोड़ी देर बाद।
2: शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो,
3: अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
2: जो भी देख यही पूछ है किस की बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

भागदौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: Greasy Mess. Powered through Mess with Morning Fresh.
1: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drug driving.
2: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
3: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडो जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
4: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6477.
5: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री. सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा. जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31st May तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर.
6: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
7: Office shout out.
8: बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू गिव अ शाउट आउट टू योर कॉलीग्स. अगर ऑफिस में भी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो अपने ईमेल्स आप हमारे पास भेज सकते हैं buzz@humfm.com और बता सकते हैं कहां पर आप अपनी ऑफिस में हमें सुन रहे हैं, कितने लोग हैं आपकी टीम में, उनका नाम भी बता सकते हैं, बिजनेस का नाम भी बता सकते हैं. चाहे तो 5599 पर हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली भी. और कोई पर्टिकुलर गाना है जो आप सुनना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, कोशिश करेंगे कि वो गाना भी हम आपको सुनाएं. तो आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर या फिर आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं

हम ब्लाइंड बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स पर आज देखे तो माय टाइम में आपके साथ हम शामिल हैं सिंस कार्शिका इज नॉट हियर, तो कई चीजों के बारे में बातें हो रही हैं। अभी कैंस के बारे में बातें कर लेते हैं। कुछ लोग कांस बोलते हैं, आदित्य राव हैदरी और हुमा कुरैशी जो है, इनका जो स्टाइल यहाँ पर रहा हैज कॉट एवरीवनस आईज। तो एक सारी सागा जो है ये अनफोल्ड हुआ जहाँ पर आदित्य राव हैदरी और हुमा कुरैशी जो है, दे टेन टू द सिक्स यार्ड्स ऑफ एलिगेंस, एकदम स्टाइलिश अंदाज में जो फेस्टिवल है इसमें ये गई थी। आदित्य राव हैदरी जो है, शी ऑप्टेड फॉर ए शैम्पेन हुड टिशू साड़ी और साथ में इसमें जो टोन एंड टोन फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी जो है ये किया गया था, एंड शी लुक्ड एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन दैट साड़ी। और इनके फोटोज़ जो है ये फिलहाल काफ़ी वायरल हो रहे हैं। हुमा कुरैशी ऑन द अदर हैंड, उन्होंने एक क्लासिक बनारसी साड़ी जो है ये पहन रखी थी और कुछ अलग थोड़ा डिफरेंट कलर्ड था इनका, जिसमें गोल्ड वर्क वगैरह जो है ये किया गया था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं ये आप डेफिनेटली जाकर ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं। द बीट ऑफ बॉलीवुड, वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। यो, यो, यो, हेलो, टेस्टिंग, टेस्टिंग 1 2। Yeah, ladies and gentlemen, when they look at you with their eyes and with a glare, they seem to control and override the very heart and mind of a man. And that you want, don't even stay for a second in space. That awareness is a part of making you anxious, and you can touch the fear. Avaaz, Niche!

0: Ashish Foods. Eat better, live better.
1: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rusbe. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram friendly stories hain, aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniya hoti hai raw, emotions hote hain real, aur conversations hote hain bina mask ke.
2: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
0: Unfiltered with Sandy and Rusbe on Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
3: Wo indelible homes wali kahani suna.
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: Award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: In this final hour, when lives hang in the balance, will you answer NZ Blood's call?
8: I do biscuits.
7: Of course.
9: Join forces and save lives. Plasma donations help create up to 11 life-saving products. nzblood.co.nz.
10: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
11: Waitoa free-range chicken, full of natural goodness and deliciousness. For that cozy family night feeling. All the feels for all the meals.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary. Dil se dil tak.
12: माय टाइम जारी है आपके लिए हम पर, और ऐसे में याद रखें कि रोवर पर चैटल खेलने का ये आखिरी वीक है, और इस आखिरी वीक में $100 ईच वीक डे या ईच डे जीतने का मौका आपके पास होता है। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, आप रोवर विज़िट करें और जाकर वहाँ पर आप चैटल जो है ये खेलें। जो की वी बोर्ड्स हैं, फ्रिजेस हैं, ये आपके लिए पेश किए जाएंगे और यू हैव टू सॉल्व देम। अगर आप विद इन द गिवन टाइम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप ड्रो में शामिल होते हैं, जहां पर ईच वीक डे $100 कैश जीतने का मौका आपके पास होता है। बट रिमेंबर, दिस इज द फाइनल वीक, संडे तक ही ये खेल रोवर पर आप खेल सकेंगे। एंड यू नीड टू हैव रोवर ऐप। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो रोवर लिखकर 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं, और लिंक यहां से हम आपको भेजेंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए जो ऐप है इसे आप डाउनलोड करके रोवर पर चैटल खेल सकते हैं। और हमारे बहुत सारे म्यूज़िक स्टेशंस, हमारे पॉडकास्ट, इन सभी का मज़ा भी ले सकते हैं टुगेदर विद आवर लाइव ऑन एयर प्रोग्राम्स।

माई टाइम विद आकाशिका नॉर्मली होता है ऑन वीक डेज, लेकिन आज इट्स विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस क्योंकि आकाशिका नहीं, तुमने सोचा आज चलो मैं ही आपका साथ दे लेता हूँ। एक घंटे का सफर तो लगभग पूरा होने ही वाला है। अभी बातें कर लेते हैं अबाउट सम ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग डिशेस जो अभी इंडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहले जो स्ट्रीट स्टाइल फ्यूजन्स हैं या समर टाइम स्पेशल्स, ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। उनमें एक है स्मोकी गार्लिक चिली पोटैटोज। इसमें जो बॉयल पोटैटोज, कॉर्न स्टार, चॉप्ड गार्लिक और चिली पाउडर, सोया सॉस, पेरी पेरी सीजनिंग, इन सभी को एक साथ मिलाकर लोग एंजॉय करते हैं। और साथ में कच्चे आम की चटनी, ये भी इन दिनों काफ़ी पॉपुलर है। और एक और चीज़ जो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इज सोसी पोहा कर्ड राइस। ये एक फ्यूजन है क्लासिक महाराष्ट्रन ब्रेकफास्ट का, और साथ में साउथ इंडियन जो दही चावल है या कर्ड राइस जो भी आप कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। थोड़ी देर बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे।

0: वेदर अपडेट।
1: धीरे धीरे तापमान आज ऊपर जाएगा। आज का हाई 18 डिग्रीज। ओवरनाइट एक बार फिर काफी ठंड होने वाली है, कम से कम 8 डिग्रीज। आज भी खुले आसमान में आप देख सकेंगे नीला आकाश आपको नजर आएगा, क्योंकि वेदर इज गोना बी ऑल गुड टुडे। साफ और सुहाना मौसम रहेगा। सनसेट आज का 5:21 PM पर होगा।

Chow Kia. Each weekday, my time with Kashika आपके लिए होता है, लेकिन आज आपका साथ देने के लिए अभी तक हम बने हुए हैं. 12 बजे तक हमारा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहेगा. एक फिल्म जो आई है जिसके बारे में शायद बहुत कम बातें अभी तक हुई हैं, और क्रिटिक्स ने इसको 3-star रेटिंग दी है और यूजर्स रेटिंग जो है ये भी 3 stars है, और ये फिल्म है दादी की शादी. 8 May को ये फिल्म रिलीज हुई थी. दादी की शादी जो है ये एक्सप्लोर करती है अकेलापन, कंपेनियनशिप और वो सारी चीज़ें, फैमिली डायनेमिक्स किस तरह से काम करते हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, और कभी कभार हंसी मजाक जो है. तो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और सोशली रेलेवेंट फिल्म इसको बताया गया, जिसमें नीतू सिंह ने काम किया है और उनके साथ कपिल शर्मा ने भी काम किया है. और इस फिल्म के रिव्यू को लेकर कई लोगों ने कहा कि ये फिल्म जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज जो है ये देती है. तो अगर आपने ये पिक्चर नहीं देखी है, आप डेफिनेटली जो फिल्म है जाकर देख सकते हैं. फिल्म का नाम दादी की शादी, नीतू सिंह और कपिल शर्मा ने की रोल्स इस फिल्म में प्ले किए हैं.

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
6: Farmers Mega Home Sale is on now with all Sleepyhead beds half price. Super deals on chiropractic bed sets and mattresses from $999. And super deals on all Balance Plus Queen bed sets and mattresses. Shop Sleepyhead beds at Farmers. Conditions and exclusions apply.
7: So you're trying to eat less meat, but you're no Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Mmm, smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
8: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
9: क्यों, क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
10: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना।
12: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
13: And award goes to Indelible Homes.
12: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
14: Kahani of Indelible Homes.
15: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
16: माई टाइम में सिक्स वर्ड स्टोरीज जो है ये आप काशिका के साथ खेलते हैं। आज चलिए कहानी को थोड़ा हम डिफरेंट एंगल दे रहे हैं। पांच वर्ड्स की ये कहानी होगी और सिक्स वर्ड आपको बताना होगा। सिक्स वर्ड आपको हमें टेक्स्ट करना होगा 5599 पर और इस कहानी को कंप्लीट करना होगा। तो जो पांच वर्ड्स हैं सिक्स वर्ड स्टोरीज की इज या द पांच वर्ड ये फाइव वर्ड्स आर शी अनलॉक्ड द केज देन, शी अनलॉक्ड द केज कोमा देन। अब एक वर्ड आपको हमारे पास टेक्स्ट करना है 5599 पर जिससे ये कहानी कंप्लीट हो जाए। एक ही लाइन में पूरी कहानी

0: नहीं आ गई है, बस एक वर्ड हमने इसमें छोड़ दिया है और वही वर्ड आपको हमारे पास भेजना है। कोई भी वर्ड हो सकता है और जो आपको फिट लगे वो आप हमें बताएं। सो आज के जो फर्स्ट फाइव वर्ड्स हैं ऑफ द सिक्स वर्ड स्टोरी, शी अनलॉक्ड द केज देन, उसके बाद क्या हुआ आप टेक्स्ट करें, थोड़ी देर बाद आपके जो जवाब हैं ये भी हम देखेंगे।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए जो आपने भेजे हैं आज सिक्स वर्ड स्टोरी के लिए, और अलग अलग तरह से आपने स्टोरी को एंड करने की कोशिश की है. एंड द फाइव वर्ड्स में शी अनलॉक्ड द केज देन. तो आज सबसे पहले प्रिया आपने देन, तो आज सबसे पहले प्रिया आपने कहा है स्क्रीम्ड. कुछ लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है, किसी ने लिखा है रेन, किसी ने लिखा है ब्लेड, और अमृत आपने कहा है फ्ल्यू. शी अनलॉक्ड द केज देन फ्ल्यू. इट मेक्स. एक और जवाब हमारे पास आया है स्माइल्ड. शी अनलॉक्ड द केज देन स्माइल्ड. हो सकता है एंटेड भी हमारे पास आया है. एंड किसी ने कहा है रिग्रेटेड. शी अनलॉक्ड द केज देन रिग्रेटेड. वो भी इस कहानी को कंप्लीट जरूर करता है. सो थैंक यू सो मच. अलग अलग आंसर्स जो है आज सिक्स वर्ड स्टोरी के लिए आपने हमारे पास भेजे हैं, और अगर आपके पास कोई और आइडिया है, कोई और जवाब है, तो वो भी 5599 पर आप हमें जरूर भेज सकते हैं.
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
3: अकड़ी पकड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो
4: दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो.

0: Dancing far and style.
1: Slow down, boys.

एटम। माय टाइम आपके लिए चाहिए ऑन हम 104.2 एफएम और रोवर पर। आपको तो पता है कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल इवनिंग जो है ये रहेगा इन ऑकलैंड, क्योंकि आ रहे हैं उस्ताद राहत फतेह अली खान और टाइमलेस हिट्स, बहुत ही खूबसूरत गाने और इनकी कव्वालियाँ जो हैं ये भी आप इन्जॉय कर सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही हैं, एक बहुत बड़ी टीम के साथ वो आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए एट द ट्रस्ट अरिना ऑन द 25th of July। और यू नो विटनेस सम ऑफ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस इन द वर्ल्ड लाइव, एक बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस होता है। जेके स्टार प्रोडक्शंस, गाउट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए टिकट्स आपके खातिर अवेलेबल हैं ऑन dryticketss.com। याद रहे dryticketss.com विजिट करते हुए टिकट्स आप ले सकते हैं और हम पर आपको एक डबल पास जीतने का मौका है। इसकी खातिर आपको क्या करना होगा, यू नीड टू विजिट आवर फेसबुक पेज। वी हैव पोस्टेड इमोजीज ऑन आवर फेसबुक पेज। आपको गैस करना है कि ये इमोजी उस्ताद राहत फतेह अली खान के कौन से गाने को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने सही सही बताया तो आपका नाम ड्रो में शामिल होगा, जहां पर दो डबल पासेस जो हैं ये जीतने के मौके हैं। आपको ज़्यादा नहीं करना कुछ, बस कमेंट सेक्शन में जाकर अपने आंसर्स जो हैं ये आप लिख सकते हैं एंड अगर सही हुए तो आपका नाम ड्रो में ज़रूर शामिल किया जाएगा। रिमेंबर कि वहाँ पर इमोजीज जो हैं ये हमने रखे हैं और आपको बस इतना ही करना है, इमोजीज को देखते हुए ये बताना है कि राहत फतेह अली खान साहब का कौन से गाने को ये इमोजीज जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डालें, सही हुए तो ड्रो में आप शामिल हो जाएंगे।

अब समय का इशारा है कि आई नीड टू मूव फ्रॉम द स्टूडियो. सुबह 6 बजे से आपके साथ हम बने रहे ब्रेकफास्ट शो में, उसके बाद माई टाइम में, और अब निकलेंगे तो केतन आएंगे आपका साथ देने के लिए ऑन लंच बॉक्स. पुलिका शिखर बैक टुमारो. हम आपसे मिलेंगे कल सुबह 6 पर एक बार फिर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.

0: ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇਗੀ।
1: ਕਿਆ ਹਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਬੁਲਾਬ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੇ ਇਸ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਸ਼ੋਅ ਮੇ। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं हम रेडियो से। मंडे इट इज, नया हफ्ता शुरू हो चुका है और महीने के बीचों बीच हम खड़े हैं। थोड़ा सा दो तीन दिन बढ़ चुके हैं आगे, लेकिन यस, वी आर इन द सेंटर ऑफ द मे। एंड ऑफ कोर्स आपका मे अब तक कैसा गया? मे कैसा गया? बट यस, आप एंजॉय करिए। अभी शुरुआत करेंगे बहुत ही बड़े गाने से, फू बाई फू, मुनाली ठाकुर की आवाज में। आप ये एंजॉय करिए और साथ में होम सिक रेमेडीज की भी तैयारी करके मुझे सेंड करिए टेक्स्ट, ताकि यहाँ पे आपके मैसेजेस में पढ़ सको कि कौन सी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मिस करते हैं। डजंट मैटर वेदर यू हैव लेफ्ट योर कंट्री और यू हैव लेफ्ट योर सिटी। सो यस, ऑन गो, यू कैन डू दैट वन एज वेल। बट यस, आई विल ब्रिंग दैट न्यूज शॉर्टली, और उसके साथ ऑफिस शॉर्ट आउट की भी बातें होने वाली। बट एंजॉय करिए सबसे पहले।